0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने SRCC के संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। डॉ शर्मा अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के संसद सदस्य हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की यह सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी वे बातचीत करेंगे। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। श्री बेटेल चेन्नई भी जाएंगे और IIT मद्रास के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीतापुरा स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर NEET PG की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जयपुर के 5 केंद्रों पर परीक्षा सुचारू तरीके से संपन्न हुई। पिछले महीने की 30 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 57 रन बनाए और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चंडी ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्य

0: देखा चोखा लेकर इस समय मैं नवीन और शगुन स्टूडियो में मौजूद हैं आपके आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए। एक और दिन आपके सामने खड़ा है बाहें फैलाकर। आइए मुझे ग्रैब कीजिए और आज मुझे इतना खूबसूरत बना दीजिए कि आज पूरा दिन पूरी जिंदगी याद रहे, है ना शगुन?
1: Well, exactly. And let's begin the program. Well, good morning, good day, everybody. A very warm welcome to all our listeners. Wake up, shake off the sleep, and turn the volume all the way up. This is Aaj Savere, and it's with me, Shagun Chopra, and Naveen, and we are very thrilled and very excited to start it. We are blasting through your morning. Actually, we have the latest trending stories and all the information that you need to kickstart your day.
0: शगुन, रविवार का दिन आपका अपना दिन होता है। छह दिन लगातार काम करने के बाद आप चाहते हैं कि आज का दिन सुकून से गुजरे, रेस्ट के साथ गुजरे। आप एक अच्छी नींद ले चुके हैं, 7:30 बज चुके हैं। उठिए, दौड़िए, भागिए, एक्सरसाइज कीजिए। और देखिए, जब आप सड़कों पर दौड़ने के लिए निकलेंगे या पार्क में दौड़ने के लिए निकलेंगे ना, बहुत ही खूबसूरत लोग आपको दिखाई देंगे और ऐसा लगेगा जैसे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे, आज आप नहीं आए दौड़ने के लिए, आज आप इतना लेट क्यों आए? तो उठिए, अपने दिन को खूबसूरत बनाइए। और शगुन ने जैसा कहा है, अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा तेज कर दीजिए क्योंकि आज हम आपको तैयार कर रखे हैं दिन भर के लिए। नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर।
1: एग्जैक्टली, वी विल बिगिन नाउ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की कई बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं और भारतीयों द्वारा बनाई गई कंपनियां भी विश्व का नेतृत्व कर सकती हैं।
2: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
1: The National Board of Examinations in Medical Sciences has successfully conducted the NEET PG 2026 examination for the affected candidates of the Ion Digital Zone, Sitapura Test Center in Jaipur. In a social media post, Ministry of Health and Family Welfare said that the examination was held across 5 test centers in Jaipur in a secure, fair and transparent manner. Earlier, on 30th of previous month, due to internal power supply issues at the test centers in Jaipur, Rajasthan, examination could not be completed for 2,445 candidates.
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वो आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और संवाददाताओं को संबोधित करेंगे। श्री शाह भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। श्री शाह 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे थे।
1: Well, we have a very interesting story. It's about vultures, the misunderstood creature species. The Melghat and Penj tiger reserves in Maharashtra have emerged as India's most successful sites for the reintroduction of captive red vultures. And this recorded encouraging survival rates. We have more details on this from our correspondent. Let's listen in.
3: According to the Bombay Natural History Society, BNHS, 29 vultures released across the two reserves between December 2025 and January 2026 recorded survival rates of up to 78%. BNHS said the success demonstrates the viability of shifting bird release enclosures to prey-rich and inviolate tiger habitat. The results are a significant boost to ongoing efforts to conserve and restore India's declining vulture populations. The encouraging survival rates offer hope that such conservation efforts will help revive vulture populations and ensure a stronger future for these important birds. With C. Prarthna, Madhuri Pange, Akashwani News, Mumbai.
0: Maharashtra ke baad ab aaiye Chhattisgarh chalte hain. छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 की हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया है। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। अगली खबर, सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय

0: राष्ट्रीय हवाई अड्डे का रनवे बारिश के पानी में डूबा हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय ने बताया है कि यह दावा बिल्कुल फर्जी है और वीडियो अप्रैल 2024 का है, जब दुबई हवाई अड्डे पर तेज बारिश हुई थी। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वो भरोसेमंद और आधिकारिक स्रोतों से मिली खबरों पर ही भरोसा करें, और शगुन भरोसेमंद और आधिकारिक स्रोत जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी है। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन को फॉलो कीजिए और देखिए हम सीधी सही सच्ची और बिल्कुल सटीक खबरें आप तक पहुंचाते हैं।
1: कंप्लीटली फैक्ट चेक्ड। द नेवल फोर्स ऑफ ईरान्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC हैज क्लेम दैट इट कैरीड आउट स्ट्राइक्स अगेंस्ट 3 ऑयल टैंकर्स ट्रैवलिंग थ्रू व्हाट इट डिस्क्राइब्ड एज एन अनऑथराइज्ड रूट इन द स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, एज वेल एज 3 वेसल्स एलिजिडली एफिलिएटेड विद द यूनाइटेड स्टेट्स। The development came after United States reportedly struck 3 Iranian oil tankers in the Persian Gulf and the Sea of Oman. The IRGC Navy said the US strikes caused damage to the vessels and described the action as an attempt to close the Strait of Hormuz. The IRGC subsequently warned vessels operating in and around the strait to avoid what it termed unauthorized waterways.
0: और अब क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर, भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को परास्त कर दिया है। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और 19वें ओवर तक वो टिकी रही, लेकिन महज 55 रन ही बना सकी और आउट हो गई। ये T20 में पाकिस्तान का अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब वक्त है आपके शहर की खबरें जानने का, तो चलिए सबसे पहले शगुन के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है चेन्नई में।
1: Well, yes, in Tamil Nadu, all the district administration authorities have issued directions on account of Ganesh Chaturthi celebrations on the 14th of this month, beginning with 14th of September. And the regulations are that only idols made up of natural, biodegradable, eco-friendly raw materials without any toxic, inorganic raw materials such as traditional virtuous clay and mud without plaster of Paris, they will be allowed for safe immersion in water bodies. And it makes a lot of sense. No toxic inorganic raw materials should mix up with water bodies, right? And use of toxic non-biodegradable chemical dyes or oil paints, synthetic paste paints on idols should be discouraged, and the idols should be submerged in designated water bodies only.
0: बिल्कुल शगुन, ये एक civic sense होती है, एक सभ्य नागरिक की एक सेंस होती है कि आपको किस तरह से अपने शहर को बचाना है, किस तरह से प्रदूषण को कम करना है। और बहुत सी ऐसी तकनीक है जिससे आप इस तरह के टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं उनको आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं।
1: right.
0: लेकिन कहते हैं ना कि आसानी से जो काम हो जाए, इसलिए लोग क्या करते हैं, जो भी आपने बताया।
1: राइट, सो इको फ्रेंडली मटीरियल शुड बी यूज्ड। नाउ वी आर हेडिंग टू बेंगलुरु।
0: बिल्कुल।
1: Minister of State for Railways and Jal Shakti V. Somanna today flagged off an assured transit time container train service connecting Whitefield ICD in Bengaluru with Tughlakabad in Delhi via Tondiarpet, Chennai. Launched by Concor in collaboration with Indian Railways, this service will operate every Saturday with a scheduled transit window of 166 hours. Mr. Somanna said the service, this is first of its kind in South India, a short transit time container. This would benefit industries in Bengaluru and surrounding hubs by improving supply chain efficiency, inventory management and production planning. Now, Naveen, we are heading to Hyderabad. So emphasizing that a healthy nation forms the bedrock of a developed country, Union Minister for Coal and Mines G. Kishan Reddy stated that achieving the vision of Viksit Bharat by 2047 requires a sustained focus on health, nutrition, sanitation, fitness and the overall well-being of women and children. So addressing the valedictory event of the 5-day Poshan Maah celebrations at AV College grounds in Hyderabad, G. Kishan Reddy urged citizens to transform nutrition and fitness awareness into a widespread people's movement rather than leaving it as a government initiative. So it should be in the hands of the individuals as well to apply it, to follow it. He highlighted the vital role of youth and students in promoting healthy habits and commended the interactive competitions organized during the event.
0: और आइए अब आपको दिल्ली, मुंबई और कोलकाता लिए चलते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने कल नई दिल्ली में दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरी सड़कों के पक्कीकरण और उनके हरितीकरण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के मानक ढांचे के अनुरूप था। अगली खबर दिल्ली नगर निगम के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में हॉटस्पॉट वाले इलाकों में वायु प्रदूषण कम करने के उपायों पर चर्चा के लिए एक समीक्षा बैठक के आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली नगर निगम के साथ साथ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, लोक निर्माण विभाग और संबंधित अधिकारी शामिल रहे। इस बैठक का उद्देश्य अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल को मजबूत करना था। दिल्ली के कला, संस्कृति और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कल आगामी शब्दोत्सव की तैयारियों को लेकर दिल्ली सचिवालय में एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक के माध्यम से आयोजन को और अधिक गरिमामय तथा जन जन को जोड़ने वाली रूपरेखा तैयार करने के लिए थी। मुंबई का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आर्थिक सहयोग से अलग हटकर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपसी सम्मान और संवाद को मजबूत करने का आह्वान किया। कल मुंबई में ग्लोबल इम्पैक्ट फोरम 2026 के दूसरे संस्करण के उद्घाटन में उन्होंने ये बात कही। महाराष्ट्र सरकार ने एक सरकारी प्रस्ताव जारी कर मौजूदा भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा करने और उन्हें अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश के लिए 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। बात नवी मुंबई की। नवी मुंबई नगर निगम के प्रमुख कैलाश शिंदे ने आगामी 6 अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के आयोजनों को अंतिम रूप देने के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की। ये सम्मेलन 14 से 15 सितंबर को होगा। वहीं महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए सेवानिवृत्ति सम्मान योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य परिवहन और धर्मवीर आनंद दिघे महाराष्ट्र यात्री परिवहन चालक कल्याण बोर्ड ने 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके 735 सदस्यों के खातों में 10,000 रुपये का मानदेय जमा किया है। कोलकाता का रुख करें तो कोलकाता नगर निगम के खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने कल डेकर्स लेन समेत एस्प्लेनेट इलाके में व्यस्त खाद्य केंद्रों में खाद्य गुणवत्ता का निरीक्षण अभियान चलाया। निरीक्षकों ने विभिन्न भोजनालयों में खाना पकाने के इस्तेमाल में होने वाली सामग्रियों की जांच की और खराब गुणवत्ता और अस्वच्छ परिस्थितियों के कारण कई दुकानों से बड़ी मात्रा में मिठाइयां जब्त की और उन्हें बंद किया। और अब पलटते हैं एक और पन्ना आज सवेरे का और जानते हैं कि कैसा है आपके शहर का मौसम।
1: Well, again, let's begin with Chennai. Chennai is likely, partly, there will be the possibility of moderate rain or thunderstorm with partly cloudy sky, and the temperatures are expected to range between minimum 27 degrees Celsius and maximum 35 degrees Celsius. Bengaluru, if we talk about Bengaluru, it is forecast to experience generally cloudy sky with one or two spells of rain or even thunder showers. The minimum temperature is expected to be around 21 degrees, while the maximum may reach 29 degrees Celsius. And Naveen, Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky with possibility of development of thunder lightning. Temperatures are expected to range from 25 degrees Celsius at the minimum to 32 degrees Celsius at the maximum in Hyderabad.
0: Delhi ka rukh karein to Delhi mein aamtaur par mausam kal jaisa hi rahega. तापमान जो है 32 डिग्री मैक्सिमम रहेगा और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और आज भी बारिश होने की संभावना है ऐसा मौसम विभाग कहता है। और अगर कल जैसी बारिश हो गई शगुन तो भाई लेने के देने पड़ सकते हैं। कोलकाता में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, मध्यम बारिश होने की संभावना है, तापमान 33 डिग्री और 27 डिग्री के आसपास रहेगा। और मुंबई के लोगों के लिए बारिश तो आम बात है और वो हमेशा उसका ख्याल भी रखते हैं। आज भी आप हल्की बारिश महसूस करेंगे। महसूस क्या करेंगे, आप पर आज भी हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री के आसपास रहेगा। तो ये था आपके शहर का मौसम। और अब बात करते हैं आज के दिन की। हर दिन अपने आप में बहुत खास होता है शगुन, और आज का दिन खास है उन लोगों के लिए जो किताबों के शौकीन हैं। कहते हैं कि कुछ सफर पैरों से तय होते हैं और कुछ सफर आंख बंद करके तय किए जाते हैं। और कुछ सफर बस एक किताब खोलते शुरू हो जाते हैं। एक किताब जो हमें हमारे कमरे में बैठे बैठे दुनिया घुमा देती है, कभी हिमालय की चोटियों तक ले जाती

0: यह तो कभी समुद्र की गहराइयों में उतार देती है, तो कभी हमें भीतर ही भीतर दुनिया से मिला देती है। और शगुन, मजा तो उस वक्त आता है जब आप कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं और अपनी छाती पे रख के उस उपन्यास को आप रख देते हैं और फिर नींद आ जाती है और उसके कैरेक्टर में आप डूब जाते हैं। किताबों की बात आज इसलिए क्योंकि आज है इंटरनेशनल रीड अ बुक डे, यानी अंतरराष्ट्रीय दिवस कि आप एक किताब तो जरूर पढ़ें।
1: Well, yes, all the bookish days, they may seem similar. National Reader Book Day invites us all to grab a book we might enjoy and spend the day reading. Reading improves memory, concentration and reduces stress. Adults who spend time reading show a slower cognitive decline and tend to participate in more mentally stimulating activities over their lifetime. So books, Naveen, they are inexpensive entertainment or educational tool and time machine too.
0: शगुन, आज के दिन किताब पढ़ने, किताबों से दोस्ती करने और कुछ पल मोबाइल की स्क्रीन से दूर रहना चाहिए। शब्दों की दुनिया में खोने का दिन है। लेकिन जरा सोचिए, आपके हाथ में एक किताब है, पन्ना पलटते हैं और अचानक किसी अनजान लेखक के शब्द आपके अपने लगते हैं। यही तो कमाल है किताबों का।
1: Well, that is true. So don't keep what you're reading to yourself. You can share your experience as well. Read aloud either to children or to grandparents, your parents. Read to your pets even, or to your stuffed animals, to children. And sit back, relax, read a book. Whether you prefer to escape into the world of fiction or learn something new, celebrate with your favorite books.
0: किताबें बोलती नहीं हैं, लेकिन बहुत कुछ कहती हैं शगुन। हमारे सामने बैठती नहीं हैं, फिर भी अच्छी दोस्त बन जाती हैं। चलिए थोड़ा सा बचपन की तरफ मुड़ते हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने पंचतंत्र, चंदा मामा, विक्रम बैताल, मैंड्रेक और ये सब कहानियां और ये सब कॉमिक्स न पढ़ी हो। ऐसा हो के नहीं सकता। तो अपनी किताबों के शेल्फ में से आज कोई पुरानी किताब ही निकाल लीजिए और पढ़ लीजिए और खो जाइए उसमें, और देखिएगा एट द एंड ऑफ द डे जब आप उस किताब को खत्म करेंगे तो आपको लगेगा यू आर द पार्ट ऑफ दैट कैरेक्टर।
1: And Naveen, if you'd like to start reading regularly, but you can never seem to find the time, why not use National Reader Book Day today as an opportunity to investigate other ways of fitting reading into your day. Try downloading and listening to an audiobook also on your daily commute. It will help. Or if getting to bookshops is the problem, invest in an electronic reader or download books straight to your device. There are so many options.
0: बिल्कुल, यानी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, और अगर नहीं पढ़ना चाहते ना तो कम से कम आज तो एक पन्ना तो पढ़ के देखिए, मजा आएगा। जस्ट वन पेज,
1: राइट।
0: तो ये थी आज के दिन की बात, लेकिन आज के दिन में और भी बहुत कुछ छुपा है। सीधे आपको लिए चलते हैं सन 1774 में।
1: Well, yes, the British government supported Peshwa Raghunath Rao to reconquer Pune in 1774.
0: आज ही के दिन सन 1776 में ग्वाडेलोप द्वीप में तूफान आया था जिसमें 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।
1: In 1965, the Indian Army crossed the international border toward Lahore, Pakistan. This was a strategic move to counter Pakistan's Operation Grand Slam in Jammu and Kashmir. Now, in the year 1990, the Indian Parliament officially passed the Prasar Bharati Bill to establish India's public service broadcaster. This happened in 1990. In 1947, the government created a new Ministry of Relief and Rehabilitation of Refugees.
0: मैं आपको लिए चलता हूँ सन 2007 में। आज के दिन ब्रिटेन की द ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी ने मानव पशु संकर भ्रूण पर शोध करने के सिद्धांत को रूप से अनुमति दे दी थी। तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से। अब याद करते हैं उन महान व्यक्तित्वों को, उन महान व्यक्तियों को जो आज कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात अलाउद्दीन खां की। प्रसिद्ध सरोद वादक, आज उनकी पुण्यतिथि है।

अलाउद्दीन खान ने सबसे बड़े भारतीय घरानों में से एक मैहर घराने की नींव रखी थी। अलाउद्दीन खान को सन 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उस्ताद अली अकबर खां भारत में शास्त्रीय संगीत की परंपरा के पितामह कहे जाने वाले बाबा अलाउद्दीन साहब के ही बेटे हैं। उन्हीं के संरक्षण में मैहर घराने की विरासत को उन्होंने संभाला। उस्ताद अलाउद्दीन खां ने पंडित रविशंकर और अल्लाह रखा खां को भी शास्त्रीय संगीत सिखाया। और शगुन, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो ये कि दरबारी संगीतकार होने के बावजूद अलाउद्दीन खां साहब ने आम जन में

0: So many beautiful songs. Today, listeners, it's also director, screenwriter, film producer, actor. It's his birthday, Rakesh Roshan. Well, he appeared in 84 films and then 1970s through the 1980s. And he has so many movies that he has worked in and we have admired him.
1: राकेश रोशन ने अपने करियर की शुरुआत की थी एक असिस्टेंट के तौर पर. इसके बाद अभिनेता के रूप में 1970 में फिल्म घर घर की कहानी से उनका फिल्मी सफ़र शुरू हुआ. एक बात उनके बारे में बहुत ख़ास है कि उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई वो क से शुरू थी. कहते हैं कि क जो है या के जो है उन्हें बहुत पसंद था. कहो ना प्यार है, कोई मिल गया, क्रिश एंड देयर सो मैनी ब्यूटीफुल मूवीज़. और मैंने और शगुन ने थोड़ी सी मेहनत की है, एक मेडली निकाल के लेकर आए हैं. बहुत सुंदर सी है जो कि हमने राकेश रोशन के गीतों पे बनाई है. लेकिन उससे पहले और भी आपके बारे आपको बताते हैं राकेश रोशन के बारे में. राकेश रोशन ने शुरुआती अगर उनकी मूवी देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि कैसा सा हीरो है ना, थोड़ा सा अजीब सा लगता था. लेकिन उन पर जो पिक्चराइज गाने हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि आपको लगेगा कि अरे ये गाने उन पर पिक्चराइज्ड हैं.
0: एंड दे हैव बीन वेरी पॉपुलर अमंग्स द मासेस. एंड वेल यू मेंशनड के खुद गर्ज वाज आल्सो देयर, द रिवेंज ड्रामा थ्रिलर खून भरी मांग 1988, द एक्शन कॉमेडी किशन कन्हैया एज वेल इन 1990, मेलोड्रामेटिक थ्रिलर करण अर्जुन इन 1995. वेल दी एज अ फिल्म मेकर दीज वर हिज वर्क्स.
1: तो चलिए ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ उन गीतों को सुनते हैं और आज आप दिन भर उन्हें गुनगुनाएंगे.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर के हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को पहले आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। भारत ने दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?

0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वाहनों की बिक्री 20% से अधिक बढ़ी है। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन का निर्यात अब 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है और घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
1: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा, आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा, भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।
2: अमित शाह का आज का दौरा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़ा है। गृह मंत्रालय की बैठक में गोवा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बाद में बीजेपी के नए राज्य कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। दिन के अंत में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक भी होगी। कल अमित शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
3: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। वे सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में

0: संप्रभु पूंजी का उपयोग भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। एक रिपोर्ट।
1: संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने दो महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके।
2: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसी लगातार निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली अपराध शाखा ने इस साल अप्रैल में दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली जगह से गलत लेबल वाली और खराब गुणवत्ता की रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक सूचना के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वे अपने इंस्पेक्टर स्टाफ को अलर्ट करें और दवा के गलत लेबल वाले बैच की आवाजाही, वितरण और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। DCGI ने यह भी पुष्टि की है कि संबंधित बैच का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिकों और सरकारी हेल्थ केयर सेंटरों में दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसियों के जरिए ही दी जाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के मेलाघाट और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के पुनर्वास मामले में देश के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं। इन केंद्रों में गिद्धों को पाला गया और उनके जीवित रहने की दर उत्साहजनक रही है। एक रिपोर्ट।
3: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दोनों अभयारण्यों में कुल 29 गिद्ध छोड़े गए थे। BNHS ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि गिद्धों को पर्याप्त शिकार और कम मानवीय हस्तक्षेप वाले बाघ अभयारण्यों में छोड़ना एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। ये परिणाम देश में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हैं। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जल डबरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों और अमरीका से जुड़े 3 जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमरीका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में 3 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और एक गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये T20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां T20 मैच था। वे पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के हेजीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज में दिए गए वक्तव्य को प्रमुखता दी है। युवा ही विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की युवाओं को सलाह को सुर्खी बनाया है, बड़े सपने देखें और पूरा करने में जान लगा दें। जनसत्ता ने खतरा शीर्षक से आईआईटी मंडी के शोध को प्रकाशित किया है। हिमाचल में आकार में तेजी से बढ़ रही 9 हिमनद झीलों की पहचान हुई। एक दशक में हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें करीब 30% बढ़ी। 457 साल बाद बदलेगा दुनिया का नक्शा, लिखता है राजस्थान पत्रिका। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित, भारत सहित 164 देशों का इक्वल अर्थ मानचित्र के पक्ष में वोट। वर्ष 1569 में बने मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह वर्ष 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अमर उजाला ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को प्रमुखता दी है। 1200 बेकाबू AI एजेंट्स ने इंटरनेट पर बना ली खुद की सरकार। पकड़े जाने के डर से मिटाए सबूत, ओपन AI और एंथ्रोपिक ने रोकी सबसे ताकतवर मॉडल की ट्रेनिंग। नवभारत टाइम्स ने परवरिश पृष्ठ पर AI की बढ़ती दखलंदाजी को प्रमुखता दी है। पेरेंट्स की जगह तो नहीं ले रहा AI, मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे बच्चों को चैटबॉट से क्या हो रहे हैं नुकसान। पत्र ने बचाने के रास्ते भी दिए हैं। चैट हिस्ट्री जरूर देखें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें, AI को दोस्त बनने से रोकें और हर जवाब तुरंत मत लेने दें।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर की हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। NIA की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आई ब्रिक्स सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। और क्रिकेट में भारत ने दुबई में महिला T20 एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses centenary celebrations of Shriram College of Commerce at Delhi University, calls upon young Indians to build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. BJP Rajya Sabha MP Dinesh Sharma appointed Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. NIA Special Court convicts 10 Maoists in 2013 Chhattisgarh Jhiram Valley Massacre case. IBRICS Summit to be held in New Delhi. On the sidelines of BRICS Summit on the 12th and 13th of this month, over 500 institutional investors, finance ministers and business leaders to participate in the two-day event. And in cricket, India beat Pakistan by 7 wickets in the Women's T20 Asia Cup match in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world? Prime Minister was addressing the centenary celebrations of Shriram College of Commerce, SRCC, at Delhi University yesterday evening.
4: कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
3: Mr. Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy

0: நேர்களே, 100.1 எஃப்எம் கோல்டில் ஒலிக்கவிருப்பது திரை கானம். திரைப்பட பாடல்களை கேட்கும் முன்,
1: நமஸ்கார், மை ஹூ கைலாஷ் கேர் ஓர் ஆகாஷ்வாணி கே சபி ஸ்ரோதாவோ கோ மேரா பாரம்பார் பிரணாம் ஓர் பாரத் கி சேனா கோ சமர்ப்பித் யே மேரா கீத் பாரதிய சேனா ஜோ தீனோ சேனாவோ கோ சமர்ப்பித் ஹை ஹர் தேஷ்வாசி கோ சமர்ப்பித் ஹை तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूँ। मैं हूँ आपका कैलाश खेर।
2: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: நிலை 100.1 FM கோல்டில் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை. ஜெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே நவீன் சக்சேனா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
2: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वो अवकाश प्राप्त एडमिरल देव कुमार

0: आर देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। वो राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वो अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
1: जो निर्देश होगा जो भी प्रधानमंत्री जी का वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने दो महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के एक अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज तड़के उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया था। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या 1344 हो गई है। इस घटना में 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अब भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। नोवाकोट जिले में 10 दिनों तक कीचड़ और मलबे के नीचे दबी एक 60 वर्षीय महिला को बचा लिया गया। मृतकों की पहचान के लिए कई मामलों में डीएनए परीक्षण का सहारा लिया जा रहा है। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां T20 मैच था। वो पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के ही हे जी टिंग और रेन जियांगजू की जोड़ी से होगा। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अर्जियन अयूब और टैन वी कियोंग को हराया था। मौसम विभाग ने बिहार, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, कर्नाटक के भीतरी हिस्सों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, "Today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world?" The Prime Minister was addressing centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce SRCC at Delhi University yesterday evening.
3: आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
2: Mr. Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. He said the world is watching India become the fastest growing major economy.
3: देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अपने ऑल टाइम हाई पर है। आज भारत करीब करीब 2,00,000 करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है। 2013-14 में हम 600-700 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे। आज ये आंकड़ा करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है।
2: The Prime Minister said

0: हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती। हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करने वाला देश है।
0: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वाहनों की बिक्री 20% से अधिक बढ़ी। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन का निर्यात अब 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है और घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
0: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
1: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आईब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजना के लिए करना है। एक रिपोर्ट।
2: संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की सऊदी अरब की ये पहली यात्रा है। वो सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु, पर्यावरण, जल तथा कृषि उपमंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। वो सऊदी अरब में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी बातचीत करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों और अमरीका से जुड़े 3 जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमरीका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में 3 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। एक रिपोर्ट।
3: ईरानी नौसेना के अनुसार अमरीकी हमलों से जहाजों को नुकसान पहुंचा है और ये होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की कोशिश है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने होर्मुज और उसके आसपास चलने वाले जहाजों को अनधिकृत जलमार्गों से बचने की चेतावनी दी है। उधर अमरीका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि ईरानी कच्चे तेल के टैंकर अरबों डॉलर के गुप्त नेटवर्क का हिस्सा थे। अमरीकी सेना ने कहा है कि टैंकर कायलो हमलों के बाद निष्क्रिय हो गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ईरानी वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों की कड़ी निंदा की है। उसने चेतावनी दी है कि अमरीकी हमलों और हस्तक्षेप के जारी रहने के परिणाम अमरीका और उसके सहयोगियों को भुगतने होंगे। विश्व

0: समर्पण के लिए समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल अमरीकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की। ये मुलाकात रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के सिलसिले में थी। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब रूस और यूक्रेन के बीच हवाई हमले जारी हैं। श्री पुतिन ने बातचीत के दौरान यूक्रेन पर रूसी हमले 3 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। जवाब में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी सोमवार तक रूस पर हमले रोकने को तैयार है। बातचीत में राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के हालात को जटिल बताया। अमरीकी दूत आज यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा करेंगे। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 1344 हो गई है। इस घटना में 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अब भी लापता हैं। अब तक 13100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। नोवाकोट जिले में 10 दिनों तक कीचड़ और मलबे के नीचे दबी एक 60 वर्षीय महिला को बचा लिया गया। मृतकों की पहचान के लिए कई मामलों में डीएनए परीक्षण का सहारा लिया जा रहा है। लोगों को अपने रिश्तेदारों की पहचान करने में सहायता के लिए 1270 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया है। बचाव और राहत सामग्री वितरण, शव प्रबंधन और सड़क सफाई के लिए प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 7912 पुलिसकर्मी तैनात हैं। महिला क्रिकेट में दुबई में टी20 एशिया कप के ग्रुप ए के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और एक गेंद में केवल 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये टी20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्रीचरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट लिए। ये मैच हरमनप्रीत कौर का बतौर कप्तान 150वां टी20 मैच था। वो पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। अभी अभी प्राप्त खबरों के अनुसार मिस्र की एक एंकर सारा खलीफा को ड्रग तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई है। सभी दोषियों को फांसी दिए जाने का आदेश दिया गया है। अदालत ने माना कि आरोपी एक आपराधिक गिरोह चला रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक स्तर की अग्रणी पेशेवर कंपनियां बनाने का आह्वान। भारत परामर्श, लेखांकन, वित्तीय और कानूनी क्षेत्रों में दुनिया का नेतृत्व कर सके। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पहले आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन भी होगा। इसमें 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ईरान की नौसेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों पर हमले का दावा किया। रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमरीकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की। अमरीकी दूत यूक्रेन से भी वार्ता करेंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: நேர்களே, உளுத்த அந்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது சுகமான ராகங்கள் நிகழ்ச்சி. 100.1 எஃப்எம் கோல்டில் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே நிகில் குமார். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
2: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाए। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे गृह मंत्रालय की बैठक का नेतृत्व करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।

0: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया है। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण का सहारा भी लिया जा रहा है। मिस्र की एक अदालत ने टीवी एंकर सारा खलीफा समेत 12 लोगों को ड्रग्स तस्करी मामले में मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि आरोपी एक आपराधिक गिरोह चला रहे थे जो मादक पदार्थों के निर्माण और बिक्री के लिए कच्चा माल आयात करता था। आरोपियों के पास से अवैध हथियार होने की बात भी सामने आई है। सारा खलीफा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि अधिकारियों ने उन्हें नशीले पदार्थों के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए मजबूर किया था। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सहित आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री, 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। इस सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का रनवे बारिश के पानी में डूबा हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय ने बताया कि वीडियो अप्रैल 2024 का है जब दुबई हवाई अड्डे पर तेज बारिश हुई थी। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज उनका सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। सात्विक और चिराग ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद, अजरियन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया था। दुबई में महिला क्रिकेट के 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम ने 18 ओवर और एक गेंद में 55 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said today, Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world? Prime Minister was addressing the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, at Delhi University yesterday evening.
2: दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
1: मिस्टर मोदी सेड इंडियाज 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज रिफ्लेक्ट इट्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। ही सेड इंडिया हैज कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम पॉलिसी पैरालिसिस टू पॉलिसी डायनामिज्म। ही सेड द वर्ल्ड इज वॉचिंग इंडिया बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। More than 500 institutional investors, finance ministers and business leaders will participate in the inaugural iBRICS summit on the sidelines of BRICS summit in New Delhi on the 12th and 13th of this month. The two-day summit is designed to connect sovereign capital with bankable infrastructure, energy and digital capacity projects across 21 BRICS member states and partner nations. Sovereign wealth funds, pension funds and family offices attending the iBRICS summit manage a total wealth of $1 trillion. They will discuss cross-border investments, non-dollar settlements and payment systems among the BRICS economies. As BRICS Chair 2026, India will be hosting the 18th BRICS Summit on September 12th and 13th at Bharat Mandapam in New Delhi. In Nepal, the death toll from the devastating flash floods stands at 1,344, while around 5,000 people

0: நேரம் 12:59 ஐம்பத்து நொடி. 100.1 எஃப்எம் கோல்டில் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை. டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே நிகில் குமார். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
2: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
2: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है। 12 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला हुआ था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोग बचाए जा चुके हैं। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण की सहायता भी ली जा रही है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉडेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा आई। ईरान के कुर्द शहर सरंदज में एक ईंधन टैंकर में विस्फोट होने से 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं। ये टैंकर कई कारों से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया। रिपोर्ट के अनुसार ब्रेक प्रणाली में खराबी के कारण ये दुर्घटना हुई। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने

0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। इस सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर भी चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। खिताबी मुकाबले में आज दोपहर 1:50 पर भारतीय जोड़ी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर में महज 55 रन पर ही सिमट गई। जवाब में भारत ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Lalima Aneja Dang. Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, "Today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world?" The Prime Minister was addressing centenary celebrations of Shriram College of Commerce, SRCC, at the Delhi University yesterday evening.
2: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
1: Mr. Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. He said the world is watching India become the fastest growing major economy. BJP Rajya Sabha MP Dinesh Sharma has been appointed Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. Dr. Sharma will succeed Admiral D.K. Joshi, retired, who took over as the Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands on October 8, 2017. Dr. Sharma, 62, earlier served as Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh. His Rajya Sabha term was to end on November the 25th. A Rashtrapati Bhavan communique issued late last night said that Dr. Sharma's appointment will come into effect from the date he assumes charge of his office. Well, more than 500 institutional investors, finance ministers and business leaders will participate in the inaugural iBRICS Summit on the sidelines of BRICS Summit in New Delhi on 12th and 13th of this month. The two-day summit is designed to connect sovereign capital with bankable infrastructure, energy and digital capacity projects across 21 BRICS member states and partner nations. Sovereign wealth funds, pension funds and family offices attending the iBRICS summit manage a total wealth of $1 trillion. They will discuss cross-border investments, non-dollar settlements and payment systems among BRICS economies. As BRICS Chair 2026, India will be hosting the 18th BRICS summit on September 12th and 13th at Bharat Mandapam in New Delhi. In Nepal, the death toll from the devastating flash flood stands at 1,344, while around 5,000 people, including nearly 590 foreign nationals, remain missing. More than 13,100 people have been rescued so far. A 60-year-old woman was rescued alive after being trapped under mud and debris for 10 days in Nuwakot district. Authorities are facing difficulties in identifying the deceased, with DNA testing being used in several cases. The naval force of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, has claimed that it carried out strikes against three oil tankers traveling through what it described as an unauthorized route in the strategic Strait of Hormuz

0: இசையமல நிகழ்ச்சியில் இதுவரை ராஜேஸ்வரி சங்கர் அவர்களின் பாட்டு கேட்டோம். எம் ஏ சுந்தரேஸ்வரன் அவர்கள் வயலின், பி ஆர் ஜெயக்குமார் அவர்கள்.
1: Good afternoon. This is Akashwani and I'm Lalema Aneja Dang with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's economic strength and policy dynamism is driving nation towards Vikasit Bharat, calls upon Indian companies to aspire to lead the world. India backs UN resolution on equal area world map, reiterates Jammu and Kashmir and Ladakh must be depicted as per Indian official map as sovereignty and territorial integrity are non-negotiable. 10 people dead, several hospitalized after consuming suspected spurious liquor in Sagar district of Madhya Pradesh. Iran strikes 3 US tankers and vessels in Strait of Hormuz. Flood situation worsens in Bihar and Uttar Pradesh after heavy rainfall. IMD forecasts heavy rain over Haryana, Chandigarh, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh. In China, Masters Badminton, Indian pair of Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to take on Chinese pair in title clash this afternoon. Prime Minister Narendra Modi has called upon Indians to dream big and lead from the front, saying that if Indian talent can lead the world's top companies, Indian enterprises can also lead the world. Mr. Modi made these remarks while addressing the gathering at the centenary celebrations of Shriram College of Commerce, SRCC, in New Delhi. Encouraging the ambitious spirit of the 21st century youth, the Prime Minister celebrated their drive to build unicorns, innovate in drone technology and create cutting-edge AI solutions.
2: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं. अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें.
1: The Prime Minister also highlighted that the world now praises India's policy dynamism and its status as the fastest growing major economy. He asserted that achieving a 7.8% quarterly growth amid the West Asia war and global trade hurdles demonstrates India's intrinsic capability.
2: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है. तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है. अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई. 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है.
1: The Prime Minister also celebrated the success of the Make in India initiative in transforming the nation from a massive importer to a leading exporter. During his address, he shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. Mr. Modi also noted that the defense exports, which were just 600 to 700 crore rupees in 2013-14, has reached 40,000 crore rupees now. Mr. Modi also highlighted India's unprecedented speed in infrastructure development and policy execution, with projects that earlier took decades now being completed in just a few years. He said rapid electrification of the railway network and a growing number of free trade agreements are opening up new opportunities for the youth of the country.
2: भारत की नीति निर्णयों में आई ये गति दुनिया के बाकी देश भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं. इसलिए वो भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं. बीते दशक में करीब 40 देशों के साथ व्यापार समझौते हुए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं. इसे लेदर हो, टेक्सटाइल हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, हमारा प्रोसेस्ड फूड हो, श्रिम्प हो, ऐसी हर चीज के लिए.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। तेज बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन यांग यू से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं, तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमताओं को दर्शाती है।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: श्री मोदी ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब प्रमुख निर्यातक राष्ट्र बन रहा है। स्मार्टफोन का निर्यात 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जबकि देश का रक्षा उत्पादन करीब 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने देश में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं को पूरा होने में पहले दशकों लगते थे, वे अब कुछ ही वर्षों में पूरी हो रही हैं। उन्होंने रेलवे के विद्युतीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 तक 30% से भी कम रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि पिछले 12 वर्षों में लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। वे कल रात गोवा पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
2: अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ गोवा से जुड़े अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे जल्द ही मीडिया से बातचीत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय

0: है अटल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। वे पार्टी की स्टेट कोर कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। कल 28वें वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनमें कुछ की हालत गंभीर है। यह मामला बांदा थाना क्षेत्र के नौरोजा और घुघरा खुर्द गांवों का है। शुरुआती जांच में शराब में मिथाइल अल्कोहल होने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट तथा अडिग है। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रस्ताव किसी खास मानचित्र, प्रक्षेपण या किसी देश की सीमा के चित्रण का समर्थन नहीं करता। होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास अमेरिका ईरान संघर्ष में इस सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने होर्मुज जल डमरू मध्य और उसके आसपास जहाजों पर हमले किए हैं। कल के ताजा घटनाक्रम में अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के 3 तेल टैंकरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य के संरक्षित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही रिमोट से संचालित अमेरिका की एक नाव को निशाना बनाया है। अमेरिका के दूत आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। शांति प्रक्रिया के तहत अमेरिकी दूतों की यह यूक्रेन की पहली यात्रा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल क्रेमलिन में अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर से मुलाकात की थी। बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कीव पर रूसी हमलों को 3 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी सोमवार तक मॉस्को पर हमले रोकने के लिए तैयार है। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 1344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए DNA परीक्षण की सहायता ली जा रही है। 1270 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर दिया गया है। भारत और चीन की टीमों की सहायता से कई पनबिजली परियोजनाओं में बचाव अभियान अब भी जारी है। उधर चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान सॉडेल से कई दिन की मूसलाधार बारिश के कारण ये दुर्घटना हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट जिले में स्थिति और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया।
3: राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और फरुखाबाद में खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुँच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री

0: बाटी। उधर मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी दो दिनों तक पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार के कई हिस्सों में भी बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली में भी लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कल बिजली गिरने की भी संभावना है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये विशेष सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोजन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर NDMC क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यमुना नदी के किनारे सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की गई है। इस बीच NDMC नई दिल्ली के प्रमुख इलाकों में सौंदर्यकरण और सड़कों के स्वरूप में सुधार से जुड़े कार्य कर रही है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेताओं, आउटरीच देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को एक मंच पर एकत्रित करेगा। समर्थ के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आईब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आईब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है।
3: सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष फरहतनाज।
1: भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम दूसरे अल अलामीन अंतरराष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुकी है। ये एयर शो 8 से 10 सितंबर तक अल अलामीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टीम सुनियोजित प्रदर्शनों की श्रृंखला के माध्यम से सटीकता, पेशेवर अंदाज और उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सारंग टीम देश में ही डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का संचालन करेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
4: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
1: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के साधारण चुनाव कराने के लिए सांविधिक नियम जारी किए हैं। ये नियम महापौर, अध्यक्षों और वार्ड सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ उपमहापौर और उपाध्यक्षों के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए बनाए गए हैं। संशोधित कानूनों के तहत नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। विश्व के पांचवें नंबर की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद, अजरियन अयूब और टेन वी कियोंग को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व करने का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में

जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: திரைகாணம் கேட்டீர்கள் நேர்களே. இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारतीय लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर सकते हैं तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं।
2: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो?

0: हो सकती, हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती। हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। राधाकृष्ण आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। वे कल रात गोवा पहुंचे। श्री शाह ने आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नशा युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज 4 मंजिला इमारत ढह गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर दमकल की 18 गाड़ियां तैनात की गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एहतियात के तौर पर पास की एक इमारत को भी खाली करा लिया गया है। मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता देने की हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। सम्मेलन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़ी प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल है उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट और अडिग है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल सऊदी अरब की आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा पर रियाद पहुंचे। मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में सऊदी अरब के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपमंत्री डॉ. तारिक अल हमद ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मंगलवार तक चलने वाली अपनी यात्रा के दौरान श्री सिंह मानव संसाधन, कौशल विकास, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर सऊदी अरब के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से जारी है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने दूसरा गेम जीतकर शानदार वापसी की है। सेमीफाइनल मुकाबले में कल उन्होंने मलेशिया की नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया था। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक वर्षा की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Union Home Minister Amit Shah has said that a drug-free youth will play a crucial role in achieving Prime Minister Narendra Modi's vision of a developed India by 2047. Mr. Shah was addressing a press conference at Panaji in Goa. He said, the government has prepared a 3-year roadmap to make India drug-free by 2029, based on a 4-pillar approach aimed at dismantling

0: देखिए रोजगार समाचार पत्र 29 अगस्त 2026 से 4 सितंबर 2026 तक। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान तेजपुर असम भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में मनोचिकित्सा के सहायक प्रोफेसर, सूक्ष्म जीव विज्ञान के सहायक प्रोफेसर और नैदानिक मनोविज्ञान के सहायक प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। शैक्षिक अर्हता, अनुभव, आयु आदि जैसी आवश्यकताओं का विवरण संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप देख सकते हैं इसके लिए वेबसाइट www.igbrimh.gov.in। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण तकनीकी केंद्र बेंगलुरु में अनुभाग अधिकारी के एक पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। निर्धारित प्रपत्र में आवेदन इस पते पर भेजे जा सकते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, आधार कॉम्प्लेक्स, NTI लेआउट, टाटा नगर, कोडीगेहल्ली टेक्नोलॉजी सेंटर, बेंगलुरु। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 29 अगस्त से 4 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौरपुर राजस्थान आमंत्रित करता है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। मास्टर राजपत्रित PGT, सहायक मास्टर TGT, मास्टर PGT के 2 पद रिक्त हैं जबकि सहायक मास्टर का 1 पद रिक्त है। आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षिक अर्हताओं, योग्यता, अनुभव, वेतन, आरक्षण आदि की विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं रोजगार समाचार पत्र 29 अगस्त से 4 सितंबर 2026 का। केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली भारत सरकार के कार्यालय में स्टोर कीपर समूह सी के एक पद को प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर भरने हेतु योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। रिक्ति सूचना के साथ आवेदन के लिए प्रारूप और अन्य विवरण केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट का पता है cwc.gov.in/recruitment। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। अधीक्षण अभियंता, मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष, वरिष्ठ विश्लेषक, उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अस्पताल वास्तुकार, वरिष्ठ क्रय सह भंडार अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, कार्यकारी अभियंता विद्युत, मुख्य चिकित्सा सामाजिक सेवा अधिकारी, CSSD अधिकारी, वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ, लेखा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अभिलेख अधिकारी तथा पर्यवेक्षी चिकित्सा सामाजिक सेवा अधिकारी। आवेदन का प्रारूप और पदों से संबंधित आयु, अर्हता, अनुभव और अन्य जानकारी का विवरण एम्स पटना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट का पता है www.aimspatna.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज गए हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या लाए हैं आज आपके लिए वो खास। दोस्तों, इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रोज की तरह रहेगी हमारी बराबर नजर।

0: और हम करेंगे याद उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों परिक्रमा के संक में आज हूं मैं मुनीश शर्मा और मेरे साथ हैं हमारी सहयोगी सायरा मुज्तबा। नमस्कार सायरा।
1: Namaskar Munish, Adab, and a very warm welcome to all our listeners also who have joined us in this Sunday episode of Parikrama. And yes, Munish has already told you what to look forward to.

0: already told you what to look forward to in today's show. Hasbe Dastoor laate hain hum aapke liye taza tareen khabrein. And since the name of the show is Parikrama, we'll go to different parts of the country. Desh ki parikrama pe niklenge. Dekhenge kya kuch khas hai hamare correspondents ke paas in that segment. And of course, the last segment in which we remember some of the personalities who either have their birth or death anniversaries or maybe birthdays today as well. But first, let's start with the headlines, Munish.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र बनने की ओर ले जा रही है भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व करने का आह्वान किया
0: India backs UN resolution on equal area world map, reiterates Jammu and Kashmir and Ladakh must be depicted as per Indian official map as sovereignty and territorial integrity are non-negotiable.
1: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत कई अस्पताल में हुए भर्ती
0: ईरान स्ट्राइक्स 3 यूएस टैंकर्स एंड वेसल्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज
1: तेज बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है गंभीर हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब और उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान
0: And in China Masters Badminton, Indian pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to take on Chinese pair in title clash this afternoon. And now, of course, we throw open the show with our segment, Dateline India. And Monish, the most important thing to, you know, that Indians are discussing is, of course, the successful launch of ISRO's EOS-05 satellite. Well, the Indian Space Research Organization successfully launched the GSLV-F-17 rocket from Sriharikota early on 4th September, placing the much-awaited EOS-05 Earth observation satellite into sub-geosynchronous orbit. ISRO said that the state-of-the-art Earth observation spacecraft, EOS-05, successfully placed into sub-geosynchronous orbit around about 18 minutes after it lifted off from the spaceport. And India Space Agency returned to the launch pad after a bruising phase marked by back-to-back failures of its trusted PSLV rocket. In such circumstances, the burden shifted to the GSLV Mark II, affectionately and sometimes nervously called ISRO's naughty boy.
1: Very cute and befitting indeed, naughty boy. तो सायरा दरअसल इस बार राहत तालियों की गड़गड़ाहट और नया आत्मविश्वास भी देखने को मिला क्योंकि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV-F-17 ने EOS-05 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उसकी मंजिल तक पहुंचाया ये मिशन सिर्फ एक और लॉन्च से कहीं ज्यादा था इस बात का सबूत था ये कि इसरो में अभी भी मुश्किलों से उबरने फिर से संगठित होने और वापसी करने की क्षमता है
0: Indeed, Monish, you said it so right that of course ISRO has come back and this time of course with a bang and the success assumes even greater significance because it came at a time when questions were being asked about India's launch capability. The Polar Satellite Launch Vehicle or PSLV, long considered as ISRO's workhorse, suffered consecutive failures in 2025 and even in January 2026. Those setbacks forced ISRO into a painstaking investigation process.
1: जी हाँ सायरा दरअसल पीएसएलवी बेड़े को अभी उड़ान के लिए मंजूरी नहीं दी गई है इंजीनियर अभी भी इसकी टेस्टिंग और जरूरी सुधार कर रहे हैं इससे यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि पिछली नाकामियों में कोई साजिश तो शामिल नहीं थी रॉकेट का मिजाज समझना जरा मुश्किल होता है और इसीलिए तो इसे रॉकेट साइंस कहा जाता है और यही वजह है कि दुनिया के बहुत कम देश ही नियमित रूप से रॉकेट लॉन्च करते हैं श्रीहरिकोटा से किसी बड़े रॉकेट का ये 107वां लॉन्च था
0: And this time, Monish, the rocket performed as planned. The satellite began its journey towards geosynchronous orbit, nearly 36,000 kilometers above Earth. From that remarkable vantage point, EOS-05 is expected to provide something that India has long lacked, that is, continuous surveillance of a fixed region. The satellite is India's first ever imaging satellite designed to operate from a geosynchronous orbit. Unlike other low Earth orbit satellites that that pass over a set location periodically, EY-05 satellite is designed to maintain a continuous monitoring of Indian territory and surrounding regions. It would ensure a closer and consistent observation of the Indian territory and will go a long way in providing critical information about weather systems, disasters, infrastructure monitoring, and general surveillance.

0: of the region.
1: GSLV-F-17 rocket ne EOS-05 ko yojna se zyada orbital energy di. Prithvi se iski sabse unchi jagah ummeed se lagbhag 2092 kilometer zyada hai. ये सैटेलाइट के लिए अच्छी खबर है क्योंकि अब स्पेसक्राफ्ट को अपनी आखिरी जियोसिंक्रोनस ऑपरेटिंग ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए अपने प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा. भूमध्य रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर की अपनी आखिरी जियोसिंक्रोनस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए EOS-05 अपने ऑर्बिट को सब GTO से ऊपर उठाने और उस ऊंचाई पर उसे गोलाकार बनाने के लिए अपने ऑनबोर्ड प्रोपल्शन का इस्तेमाल करेगा. EOS-05 का लॉन्च खास तौर पर अहम था. दरअसल इसने लगभग 8 महीने के अंतराल के बाद इसरो की वापसी को भी चिन्हित किया है. दिलचस्प बात यह है कि यह सैटेलाइट स्पेस एजेंसी का 2026 का पहला सफल लॉन्च भी था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट से भारत के पहले इमेजिंग सैटेलाइट EOS-05 को ले जाने वाले GSLV-F-17 के सफल लॉन्च की प्रशंसा की है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सफल लॉन्च को भारत के स्पेस सेक्टर की पहचान बनने वाली उत्कृष्टता, इनोवेशन और बढ़ती क्षमताओं का प्रतिबिंब बताया है. प्रधानमंत्री ने इसे इसरो की एक शानदार उपलब्धि और देश के लिए गर्व का क्षण भी बताया.
0: Defense Minister Rajnath Singh has also commended the successful launch of GSLV-F-17 carrying EOS-05, India's first ever imaging satellite. In a social media post, Mr. Singh said that EOS-05 strengthens India's Earth observation capabilities and reflects the growing sophistication of its space program. He added that the expanding partnership between ISRO and Indian industry is giving greater scale to innovation, strengthening indigenous capabilities, and opening new frontiers for its space ambitions. The defense minister further said that under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, the country is steadily building a progressive, self-reliant, and globally competitive space ecosystem.
1: और दोस्तों अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि क्या है खास आज उनके पास.
0: Well, we are going to start our Parikrama journey, Monish, with probably our favorite regions and also favorite subject. We will talk about Kashmir ki, and of course, Kashmir ki wadiyon mein agar filmon ki baat ho, ek film festival ho, to kya kehna? Well, Jammu and Kashmir is all set to host its inaugural international film festival that's going to start from tomorrow, marking a significant milestone in the Union Territory's cultural and cinematic journey. So, Monish, apne correspondent se aur khabar lete hain.
1: Bilkul, leni chahiye.
2: The much anticipated film festival is expected to bring together filmmakers, actors, producers, film enthusiasts, artists and cinema professionals from across the country and abroad, providing a vibrant platform for the exchange of ideas, stories and creative expressions. The four-day festival will be held simultaneously in Srinagar, Gulmarg and Jammu and will screen 135 films from over 40 countries under the theme Rangis Cinema. More than 300 delegates, a global jury and a prize purse of 96 lakh rupees are lined up for the festival. Organized by Department of Information and Public Relations, the festival aims to revive Jammu and Kashmir's cinematic legacy, promote local talent and create opportunities for cultural exchange, collaboration and the growth of a sustainable film economy. The screenings will cover categories including International Competition, Cinema of the World, Bharat Panorama, Jammu and Kashmir Select, Best Debut Film, Documentary and Short Films. Master classes, panel discussions, in-conversation sessions, roundtables and workshops will also bring together filmmakers, actors, critics, scholars, students and industry professionals. The festival will also showcase Jammu and Kashmir's rich heritage, cuisines, handicrafts, traditional art forms and iconic tourist destinations. Besides providing filmmakers and emerging talent with opportunities to interact with established personalities and gain exposure to international cinema. For Parikrama, this is Ishfaq Shah from Srinagar.
1: My Bharat ne Yuva Karyakram aur Khel Mantralay ki pehel विकसित भारत यंग लीड्स डायलॉग 2027 में युवाओं से भाग लेने की अपील की है. विकसित भारत क्विज के माध्यम से युवाओं को विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण में अपने विचार साझा करने का अवसर मिलेगा. एक रिपोर्ट.
3: युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की पहल विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 युवाओं को विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का एक मंच प्रदान करता है. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के युवाओं के लिए भी यह पहल विशेष महत्व रखती है क्योंकि वे

0: अपने द्वीपों के विकास, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, नवाचार, शिक्षा और रोजगार जैसे विषयों पर अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत कर वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में योगदान दे सकते हैं। द्वीप समूह में विकसित भारत के निदेशक श्री सुखरंजन बिस्वास ने बताया कि अब तक 439 युवाओं ने विकसित भारत यंग डायलॉग में भागीदारी की है, जबकि कुल 5,500 प्रतिभागियों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक विद्यार्थियों और युवाओं को इस पहल से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि द्वीप समूह के 15 से 29 वर्ष के युवा नीति निर्माता, विशेषज्ञों, केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बने। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से मैं तरन्नुम मोहम्मद।
1: And now let's talk about theater, Monish. Well, theater reflects life, emotions and society. And Tripura has a rich tradition of this art. Carrying this legacy forward, young theater practitioner Rupantar Majumdar of Agartala has been honored with a national scholarship. His achievement also highlights the guidance of his guru, theater teacher Sanjay Kaur. We have a report.

थापा जो 1-8 गोरखा राइफल से बतौर मेजर इस लड़ाई में शामिल हुए। धन सिंह थापा इस युद्ध में पांगोंग त्सो के तट पर सिरी जाप मोर्चे पर तैनात थे, जहां उनके पराक्रम ने उन्हें परमवीर चक्र के सम्मान का अधिकारी बनाया।

आज ही पुण्यतिथि है शहीद मेजर धन सिंह थापा की। परमवीर चक्र से सम्मानित नेपाली मूल के भारतीय जिन्हें यह सम्मान मिला था 1962 में, 1962 के भारत चीन युद्ध में जिन चार भारतीय बहादुरों को परमवीर चक्र प्रदान किया गया उनमें से केवल एक वीर उस युद्ध को झेलकर जीवित रहा और उसी वीर का नाम था धन सिंह।

दोस्ताना जो बनाई थी यश जौहर साहब ने। और आज ही दोस्तों जन्मदिन है फिल्मी सितारे राकेश रोशन का। बॉलीवुड की दुनिया में ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने पर्दे पर अलग अलग भूमिकाएं निभाकर अपनी पहचान बनाई, लेकिन वो ऐसे नामों में से हैं जो कैमरे के पीछे खड़े होकर भी उतना ही चमके जितना कैमरे के सामने। तो आइए याद करते हैं उन्हीं के ऊपर फिल्माए गए कुछ गीतों की एक झलक के साथ उन्हें।

0: தொடர்வது இந்தியில் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों रूपरेखा तैयार जारी की है. उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी समन्वित अभियान चलाने का आह्वान किया. गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जाँच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है.
2: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के एक रोड मैप बनाया है. 26 से 29 को हमने मिशन मोड अवधि के रूप में चिन्हित किया है. समय सीमाएं तय की है. 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है. एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन, और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय.
1: श्री शाह ने बताया कि वर्ष 2014 से 2024 के बीच 1,19,00,000 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए गए. इनकी कीमत करीब 1,89,000 करोड़ रुपए है. गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में सत्य निकेतन में बहुमंजिला पीजी आवास की इमारत ढहने की घटना के बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे. दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है. श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल

0: होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलंकर प्रदान करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीता नगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। श्री राधाकृष्णन आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। कोयला मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों में कम बिजली उत्पादन हो रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड पंजाब सहित पूरे देश में बिजली उत्पादन के लिए निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी को बंबई उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने कल उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। वे बंबई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स में फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जीटिंग और रेन जियांग यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी நேரம் 6:05.
3: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்டு 100.1.
2: இனி விளம்பரங்களை தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி நிரல் கேட்கலாம்.
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience,

0: தொடர்வது டில்லி ஏஞ்சல்.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं वैष्णवी। श्रोताओं, भारत की अर्थव्यवस्था इस समय मजबूत विकास दर के साथ आगे बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही है। इस विकास प्रक्रिया में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। एमएसएमई क्षेत्र देश में उत्पादन, रोजगार और आपूर्ति श्रृंखला को गति देने वाले प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है। ऐसे में अर्थव्यवस्था की विकास गति को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि एमएसएमई को अपनी गतिविधियां जारी रखने के लिए पर्याप्त और समय पर वित्तीय सहायता मिलती रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 5 मई 2026 को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS 5.0 को मंजूरी दी। आज के कार्यक्रम में हम आपको समझाएंगे कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम क्या है, कारोबार और खासकर एमएसएमई के लिए समय पर मिलने वाले ऋण सहायता क्यों महत्वपूर्ण है, पिछले कुछ वर्षों में ECLGS किस तरह विकसित हुई है और ECLGS 5.0 के तहत पात्र कारोबारियों को किस तरह अतिरिक्त ऋण सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। श्रोताओं, ECLGS का मूल उद्देश्य ऐसे समय में कारोबारों को अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराना है जब अचानक पैदा हुई परिस्थितियों के कारण उनके सामने नकदी का दबाव बढ़ जाता है। खास तौर पर MSMEs के लिए ये सहायता बेहद महत्वपूर्ण है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ऋण देने

0: वाली संस्थाओं को क्रेडिट गारंटी देती है। इससे बैंकों और अन्य पात्र वित्तीय संस्थानों का ऋण जोखिम कम होता है और वे पात्र कारोबारों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने में अधिक सक्षम होते हैं। आइए अब समझते हैं कि ECLGS की शुरुआत क्यों हुई और पिछले कुछ वर्षों में ये योजना किस तरह बदली है।
1: इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS की शुरुआत वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत के तहत की गई थी। उस समय COVID-19 महामारी के कारण कारोबार और आर्थिक गतिविधियां गंभीर रूप से प्रभावित हुई थीं। कारोबारों खासकर MSME को अपनी परिचालन जरूरतें पूरी करने और कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता थी। ऐसे समय में सरकार ने मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को ECLGS के तहत दिए जाने वाले अतिरिक्त ऋण पर सरकारी गारंटी उपलब्ध कराई। इसका मतलब यह था कि अगर पात्र कर्जदार की ओर से ECLGS के तहत लिए गए ऋण का भुगतान नहीं हो पाता है तो निर्धारित शर्तों के अनुसार ऋण देने वाली संस्था को सरकार की गारंटी के माध्यम से जोखिम की सुरक्षा मिलती है। ECLGS की इस व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि बैंकों और अन्य ऋणदाताओं के लिए अतिरिक्त ऋण देना आसान हो और जरूरतमंद कारोबारों तक संस्थागत ऋण पहुँच सके। समय के साथ आर्थिक परिस्थितियाँ और अलग अलग क्षेत्रों की जरूरतें बदलती गयी और उसी अनुसार ECLGS के दायरे का विस्तार किया गया। ECLGS 1.0 में MSME कारोबारी प्रतिष्ठान मुद्रा ऋण लेने वाले और व्यवसायिक उद्देश्य वाले व्यक्तिगत ऋण शामिल थे। इसमें ऐसे कर्जदार पात्र थे जिनका 29 फरवरी 2020 तक बकाया ऋण 50 करोड़ रुपए तक था और ऋण भुगतान में देरी 60 दिनों तक थी। इसके बाद ECLGS 2.0 में 26 तनावग्रस्त क्षेत्रों और स्वास्थ्य क्षेत्र को शामिल किया गया। इसमें 50 करोड़ रुपए से अधिक और 500 करोड़ रुपए तक के बकाया ऋण वाले पात्र कर्जदारों को सहायता दी गई। ECLGS 3.0 के तहत आतिथ्य, यात्रा एवं पर्यटन, अवकाश एवं खेल तथा नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्रों को सहायता के दायरे में लाया गया। वहीं ECLGS 4.0 का मुख्य जोर COVID-19 के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने पर था। इसमें अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल ऑक्सीजन से जुड़ी इकाइयां शामिल थीं।
0: श्रोताओं, ECLGS की प्रत्येक अगली कड़ी ने उस समय की आर्थिक और क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार योजना के दायरे को आगे बढ़ाया। ECLGS 1.0 से 4.0 के बीच कुल 1.19 करोड़ गारंटियां जारी की गई, जिनके अंतर्गत 3,68,000 करोड़ रुपए की राशि की गारंटी दी गई। अब 2026 में बाहरी आर्थिक और भू राजनीतिक परिस्थितियों से पैदा होने वाली चुनौतियों के बीच ECLGS 5.0 को एक नए उद्देश्य के साथ सामने लाया गया है। अब सवाल है कि ECLGS 5.0 में ऐसा क्या है जो इसे कारोबारों के लिए अधिक उपयोगी बनाता है? योजना के अंतर्गत मिलने वाली अतिरिक्त ऋण सहायता की सीमा क्या है? कौन से कारोबारी इसके लिए पात्र हैं और ऋण की शर्तें क्या हैं? आइए इन पहलुओं को समझते हैं।
1: ECLGS 5.0 को मई 2026 को मंजूरी दी गई थी और यह योजना 31 मार्च 2027 तक या 2,55,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक लागू रहेगी। इस योजना को नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लागू कर रही है। इसके तहत मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को सरकारी गारंटी दी जाती है ताकि वे पात्र कारोबारियों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध करा सकें। ECLGS 5.0 के दायरे में MSME, पात्र गैर MSME कारोबारी और अनुसूचित यात्री विमानन कंपनियां शामिल हैं। इसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक और पात्र NBFC अतिरिक्त ऋण उपलब्ध करा सकते हैं। MSME और पात्र गैर MSME कारोबारियों के लिए 31 मार्च तक मौजूदा कार्यशील पूंजी सुविधा होना जरूरी है। साथ ही उनके ऋण भुगतान में 60 दिनों से अधिक देरी नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत सभी क्षेत्रों के MSME पात्र हो सकते हैं। हालांकि गैर MSME कारोबारियों के लिए कुछ क्षेत्र योजना के दायरे से बाहर रखे गए हैं। इनमें NBFC, बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण, चीनी और एथेनॉल, सूचना प्रौद्योगिकी, कागज एवं कागज उत्पाद, शैक्षणिक संस्थान तथा चाय और कॉफी को छोड़कर अन्य पेय पदार्थ और तंबाकू क्षेत्र शामिल हैं। अगर कोई कारोबारी पात्र और गैर पात्र दोनों क्षेत्रों में काम करता है तो उसकी पात्रता वित्त वर्ष 2025-26 में पात्र क्षेत्रों से होने वाले कारोबारों के अनुपात के आधार पर तय की जाएगी। ECLGS 5.0 के तहत पात्र MSME को दिए गए अतिरिक्त ऋण पर 100% क्रेडिट गारंटी उपलब्ध है, जबकि पात्र गैर MSME के लिए यह गारंटी 90% है। इसके अलावा मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से योजना के तहत कोई गारंटी शुल्क नहीं लिया जाता। MSME और गैर MSME के लिए अतिरिक्त ऋण की सीमा वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में कारोबार की अधिकतम फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल आउटस्टैंडिंग के 20% तक है। एक

0: के लिए इसकी अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपए तक तय की गई है। ऋण की ब्याज दर भी निर्धारित व्यवस्था के तहत रखी गई है। एमएसएमई के लिए ब्याज दर एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट यानी EBLR से और पात्र गैर एमएसएमई के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट यानी MCLR से जुड़ी है। दोनों मामलों में ऋण देने वाली संस्था बेंचमार्क से अधिकतम 0.75% तक अतिरिक्त ब्याज ले सकती है, लेकिन कुल ब्याज दर 9% सालाना से अधिक नहीं हो सकती है। पात्र NBFC के मामले में ब्याज दर 13% सालाना से अधिक नहीं हो सकती है। इस ऋण की अवधि 5 वर्ष है, जिसमें 1 वर्ष की मोरेटोरियम अवधि शामिल है, यानी कर्जदार को शुरुआती अवधि में ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त समय मिलता है। अनुसूचित यात्री विमानन कंपनियों के लिए व्यवस्था अलग है। उन्हें 31 मार्च 2026 तक मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के पास मौजूदा फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज होनी चाहिए और उनकी स्थिति स्टैंडर्ड होनी चाहिए। हालांकि SMA2 खाते में शामिल नहीं है। इन विमानन कंपनियों के लिए अतिरिक्त ऋण सहायता 100% तक हो सकती है, जिसकी अधिकतम सीमा 1500 करोड़ रुपए प्रति कर्जदार है। हालांकि 1000 करोड़ रुपए से अधिक और 1500 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त राशि के लिए प्रमोटर या मालिकों की ओर से समान अनुपात में इक्विटी योगदान की शर्त है। विमानन कंपनियों के लिए ऋण पर ब्याज दर संबंधित ऋणदाता संस्था की बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीति के अनुसार तय होगी। ऋण की अवधि 7 वर्ष की होगी, जिसमें 2 वर्ष की मोरेटोरियम अवधि शामिल है। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: श्रोताओं, ECLGS 5.0 के प्रभाव को इसके शुरुआती कार्यान्वयन से भी समझा जा सकता है। 20 अगस्त 2026 तक योजना के अंतर्गत 673,989 गारंटियां जारी की गई थी और इनकी गारंटीकृत राशि 2,50,024 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। इनमें 97.3% गारंटियां संख्या के आधार पर MSME को मिली, जबकि कुल गारंटीकृत राशि में MSME की हिस्सेदारी 80.79% रही। ये दिखाता है कि योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी छोटा और मध्यम कारोबारी क्षेत्र बना हुआ है। योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से देश भर में जागरूकता और आउटरीच अभियान भी चलाए जा रहे हैं। 20 मई से 6 जून 2026 के बीच 9 स्थानों पर पहला चरण आयोजित किया गया। इसमें स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटीज, NCGTC, बैंकों, PSB अलायंस, उद्योग संगठनों और कारोबारियों ने भाग लिया। इसके बाद 10 और स्थानों पर दूसरा चरण शुरू किया गया, जिनमें से 4 स्थानों पर अभियान पूरा हो चुका है। पात्र कारोबारी जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से भी योजना से जुड़ी जानकारी और ऋण सुविधा तक पहुंच बना सकते हैं। श्रोताओं, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग अक्षत ममगाई।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। ऊनत्रिंशदधिकद्विसहस्रतमवर्षं यावत् भारतं मादकद्रव्यमुक्तं विधातुम् एका त्रिवार्षिकी मार्गदर्शिका प्रस्तुता। आगामी त्रिवर्षेषु 100 अन्ताराष्ट्रिय तथा अन्ताराज्यीय मादक सञ्जालानि खण्डयितुं केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन निर्धारितं लक्ष्यम्। भारतस्य आर्थिकशक्तिः, नीति, गतिशीलता च देशं विकसितभारतस्य लक्ष्यं प्रति नयतः। भारतीयप्रतिष्ठानानि जागतिकस्तरे नेतृत्वं कुर्युः इति प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः ओजस्वयुतम् आह्वानम्। संयुक्तराष्ट्रसंसदि समानक्षेत्रफलमानचित्रप्रस्तावस्य भारतेन कृतं समर्थनम्। सम्प्रभुता प्रादेशिक अखण्डतयोः अक्षुण्णतां रेखाङ्कयत् भारतेन प्रोक्तं यत् जम्मूकश्मीर लद्दाख समेत्य समस्त क्षेत्रस्य प्रदर्शनं केवलम् आधिकारिक मानचित्रानुगुणम् एव स्वीकार्यम्। मध्यप्रदेशस्य सागर मण्डले संदिग्ध विषाक्त मद्यपानेन 10 जनाः मृत्युमुपगताः, 35 जनाः चिकित्सालयेषु प्रवेशिताः, कतिपय संदिग्धाः आरक्षिदलेन गृहीताः। अपि च चीनदेशस्य शेन्झेन नगरे आयोजितायां बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां चाइना मास्टर्स पुरुष युगल प्रतियोगितायाः

0: चषकं भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी युगलेन विजितम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गोवा राज्ये वार्ताहर सम्मेलने 39,000 यावत् भारतं मादकद्रव्यमुक्तं कर्तुं रूपरेखां प्राकटयत्। तेन मादक पदार्थ विरोधी त्रिवार्षिक राष्ट्रीय अभियानस्य आह्वानं कृतम्। गृहमन्त्रिणा संसूचितं यत् प्रशासनेन 100 मादक संजालानि खण्डयितुं, 100 अपराधिनः भारतम् आनेतुं तथा 100 अवैधिक प्रयोगशालाः विनष्टं कर्तुं उच्च लक्ष्यं विनिर्धारितम्। नवदेहल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स महाविद्यालयस्य 100 वर्षे सम्पूर्णे सति आयोजिते शताब्दी समारोहे प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अभ्यागतः आसीत्। तेन जेन्जी युवा उद्यमिनः प्रोत्साहयितुं उच्च लक्ष्य धारणस्य मंत्रो दत्तः। तेन प्रोदीरितं यत् भारतीय मेधा जागतिक व्यापार जगत् नूतनां दिशं दर्शयति। एआई प्रौद्योगिक्याः उपयोगेन च देशः आर्थिक समृद्धिं प्राप्नोति।
1: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
0: आर्थिक दृढ़ताम प्रतिपादयन प्रधानमंत्री अवोचत यत् पश्चिम एशिया संकटावधौ अपि भारतेन 7.8% यावत् अभूतपूर्व संवृद्धि मानमर्जितम्। अनेन भारतस्य आंतरिक शक्तेः परिचयः लभ्यते। तेन प्रख्यापितं यत् वैश्विक संकटेषु भारतस्य दृढ नीति संचालनमद्य जागतिक स्तरे श्लाघनीयं वर्तते।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: आत्मनिर्भर भारतस्य दिशि मेक इन इंडिया अभियानम् अभूतपूर्वम् परिवर्तनम् साधयतीति प्रधानमंत्री अवोचत्। अनेन अभियानेन भारतम् अद्य प्रमुख निर्यातक राष्ट्रम् अभवत्। असौ न्यगादीत् यत् स्मार्टफोन क्षेत्रे 2.25 लाख कोटि रूप्यकाणां निर्यातम् सम्प्राप्तम्। रक्षा उत्पादने च 2 लाख कोटि रूप्यकाणां नूतन कीर्तिमानं स्थापितम्। भारतस्य भौगोलिक अखण्डतां संप्रभुतां रेखांकयन् विदेश मन्त्रालयः संयुक्त राष्ट्रस्य मानचित्र प्रस्तावे स्वपक्षम् उपस्थापितवान्। मन्त्रालयस्य प्रवक्त्रा रणधीर जयसवालेन प्रोक्तं यत् भारतेन यूएन प्रस्तावस्य समर्थनं कुर्वता स्पष्टं कृतं यत् भारतस्य राष्ट्रीय सीमासु किमपि भ्रामकं प्रदर्शनं असह्यमस्ति। तेन प्रोक्तं यत् अयं प्रस्तावः कस्यापि देशस्य सीमायाः अनुमोदनं नैव करोति, अपि तु केवलं समानक्षेत्रफलप्रदर्शनस्य नीतिं पोषयति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नवदेहल्याम् अद्य महती दुर्घटना अभवत् यत्र सत्यनिकेतन क्षेत्रे एकं 5-स्तरीयं भवनं ध्वस्तम् अभवत्। सूचनां प्राप्य देहली अग्निशमन दलेन 18 वाहनानि प्रेष्य आपदुद्धार कार्यम् आरब्धम्। ततः एव 4 जनाः उद्धृत्य चिकित्सालयं प्रति नीताः, तेषु एकः मृत्युमुपगतः, अन्ये च गभीरावस्थायां सन्ति। उपराज्यपालः तरंजीत सिंह संधुः, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता च पीडितानां सहाय्याय त्वरित निर्देशान् अयच्छताम्। सहैव सुरक्षा दृष्ट्या पार्श्वस्थम् एकम् अपरं भवनमपि रिक्तं कारितम्।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today being Sunday, we will be taking calls from you, our listeners, on your mutual fund related queries. But do remember, listeners, that we do not address fund specific queries. You can call us on these numbers 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: Karjor Abhinandan, Namaskar. Karubari Khabron ke saath Market Mantra hazir hai. Shrotaon, aaj Ravivar hai aur har Ravivar ki tarah aaj bhi hum mutual fund se jude aapke tamam sawalon ke jawab dene ki koshish karenge. Sawal poochne ke liye aap in numbers par hame phone kar sakte hain. Ye numbers hain 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। इससे पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन
2: जी। धन्यवाद।
1: चर्चा शुरू करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं से दुनिया का नेतृत्व करने वाली वैश्विक स्तर की कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, वित्तीय और कानूनी कंपनियां बनाने का आह्वान किया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक सितंबर के पहले सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध बिकवाल रहे और सराफा बाजार में इस सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।
1: And before we begin the program, an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Over to you, Prachi.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए समाधान विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्व भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। और इसी बीच अनुभव दिल्ली से हमारे साथ भुवन जुड़ रहे हैं। भुवन जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार जी, बोल रहा हूँ मैं दिल्ली से। मार्केट मंत्रा की टीम को और एक्सपर्ट्स को मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: मेरा प्रश्न ये है कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनको इनकम टैक्स लॉज के हिसाब से कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का परमिशन होता है, तो किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि उनका चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन खराब नहीं जाए?
3: जी, इस चीज़ की जानकारी मेरे को अभी नहीं होगी। आप अगले सप्ताह कॉल करिएगा, इसकी जानकारी आपको मैं तब दे पाऊंगा।
1: सो लाइक आवर एक्सपर्ट इज सेइंग, प्लीज डू कॉल अस विद द सेम क्वेरी नेक्स्ट वीक एंड वी विल बी होपफुली विल हैव द आंसर फॉर यू। आवर एक्सपर्ट विल हैव दैट आंसर फॉर यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FPIs वर नेट सेलर्स ऑफ इंडियन इक्विटीज इन द फर्स्ट 4 days ऑफ सेप्टेम्बर। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डिपॉजिटरी डेटा, FPIs हैव पुल्ड आउट 7,443 crore रुपीज फ्रॉम द डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट टिल नाउ इन सेप्टेम्बर। Of the total net outflow, 8,403 crore rupees were withdrawn through selling on stock exchanges, while 960 crore rupees was invested through the primary market. Despite robust domestic GDP data, healthy GST collections, record high forex reserves, and a stable currency, FPIs persisted as net sellers in domestic equities. However, in August, FPIs infused 29,631 crore rupees into Indian equities. Meanwhile, the debt market has witnessed mixed trends in foreign portfolio investors' flows. So far in September, FPIs have infused 217 crore rupees in debt securities through the general limit route. In contrast, the voluntary retention route VRR has recorded outflows of 231 crore rupees, while the fully accessible route or the FAR experienced net divestments of 377 crore rupees during the period under review. And before we go on to the next story, Akar, I have a question for you. You know, many a times when one starts investing into mutual funds, there's always this confusion as to which type of funds one should be, you know, investing it to begin with. Mm-hmm. So how can an investor decide between the various types of mutual funds, equity, debt, hybrid or other categories? So how to go about it?
3: So as you just mentioned that, there are several types of mutual funds. Even within the asset classes like equities, there are multiple categories. We have a large cap fund, we have a mid cap fund, we have a small cap fund. And if you move to hybrid, there are 7 different types of hybrid funds. One is the aggressive hybrid, one is a balanced advantage. And then we also have arbitrage equity savings funds. And even in the debt funds, there are several

0: types of categories. So to answer your question, you know, the first requirement should be to ask yourself before investing that, you know, when would you need this money? What's okay. the horizon that you want to invest it for? And then the second thing would be, what's the purpose? Is the goal negotiable or not? When I say negotiable, it basically means that, you know, are you comfortable and are you flexible with the horizon? For example, you know, if you plan to invest it for 5 years, so would you mind that, you know, if that shifts to 6 years? Once you have these questions, it will help you decide on the asset allocation. Straight away. So, you know, I mean, for newcomers, if you have a horizon of, you know, more than 5 years, that is the time only when you should be investing in equities. And if you're in a horizon is like, you know, 1 or 2 years, you should not be going towards equities or even a hybrid fund for such a short period. You should stick with debt funds. So once you have the answer of the asset class, then you should, you know, go deeper into the different kind of funds. For example, if, you know, we are talking about equities, then all the categories, they have different risk and reward ratios. So large cap is something, you know, which is, which carries the least risk among the equity categories and is the least volatile, because large cap funds invest at least 80% of the portfolio in the top 100 companies, the stocks of the top 100 companies. At the same time, if we look at the small cap funds, they are comparatively much more riskier. They do return, they do give you higher returns, but they are more volatile. So here comes that part, you know, even once you've decided the asset class, you are into equities, then what's your horizon? So if it is like just 5 years, four, 5 years, it's better you stick with, you know, less risky equity funds like large cap funds, or maybe a diversified fund if your horizon is like 6-7 years, a flexi cap fund, which invests the money across large cap stocks, mid cap stocks and small cap stocks. And if you have a higher horizon, maybe 10-15 years, at least 8-10 years, and you have that risk appetite as well, then you can look at mid cap and small cap funds. So just to conclude, one is that, you know, you should be sure of when would you need this money, what's the investment horizon, and then the purpose, whether it is negotiable, the flexibility of timing. So all these questions, along with your risk appetite, they help you decide the asset class first and then the exact fund category.
1: Yani ki hum jab nivesh karein to usse pehle ye soche samjhe ki hame kis waqt tak chahiye hamara paisa aur kitne samay ke liye hum nivesh kar rahe hain aur kya aur kitna risk hum bear kar sakte hain is dauran mein.
0: Ji,
1: shrotaon, agar aapke bhi man mein koi sawal ho mutual fund se related to bedhadak poochiye. In numbers par aap hame call kar sakte hain. Ye numbers hain 2331444 2331-0481 और 2371-7106. आपके सवालों के जवाब लेकर आकार रस्तोगी हमारे साथ हमारे समक्ष बैठे हैं. आकार, अगर कोई जो फंड है वो अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है कुछ समय से, तो हाई एक्सपेंस रेशियो के जस्टिफाई होता है?
0: देखिए, जो आपके रिटर्न्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, वो आपके एक्सपेंस रेशियोज को कंसिडर करने के बाद ही आते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि जो हमारा एक्सपेंस रेशियो होता है वो आपका एनएवी में एडजस्ट होता है, एंड रिटर्न्स आपका यूजली यूजली वो एनएवी के बेसिस पे ही होता है. एक्सपेंस रेशियोज के लिए रेगुलेटर ने, सेबी ने कुछ मैक्सिमम सीलिंग्स लगा रखी है, एंड एज फार एज अगर वो फंड आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहा है प्लस बाकी पोर्टफोलियो ठीक है एंड ऑल थिंग्स गोस, तो देर इज़ नो हार्म इन इट. बट साथ ही में मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि कुछ समय से, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो रीसेंट शॉर्ट टर्म रिटर्न्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं. कोई सा फंड ऐसा होता है, अगर आप देखेंगे कि अच्छा अभी पिछले 6 महीने में ये एकदम नंबर वन पे इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, या पिछले 1 साल में इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए. और यहीं पर बहुत ज़्यादा निवेशक गलती करते हैं. हम लोग क्या करते हैं, एकदम हम लोग आसपास के पिछले 6 महीने के, पिछले 3 महीने के, 1 साल के रिटर्न्स देखते हैं और जो टॉप पे होते हैं हम लोग सीधा उसमें निवेश कर देते हैं. बट वो चीज सही नहीं है,
1: लोभ आ जाता है मन में तुरंत.
0: बिल्कुल बिल्कुल. और उसके अलावा देखिए, ये पास रिटर्न्स पे बेसिस पे होता है, एक आपको एक खाली इंडिकेशन दे रहा है कि वो फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है. यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप उस पर्टिकुलर फंड की परफॉर्मेंस एक लंबे समय में देखें, रोलिंग रिटर्न्स पे, या फिर एक लॉन्ग होराइजन में 3 साल 4 साल 5 साल, और मार्केट के डिफरेंट फेजेस में, कि जैसे जब मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तो उस फंड ने अपने कैटेगरी के बाकी फंड्स के तरह कैसे काम किया है. केवल अभी ठीक पिछले कुछ 1-2 महीने की परफॉर्मेंस या 6-7 महीने की परफॉर्मेंस

0: एक अकेला कारण नहीं होना चाहिए कि आप उस फंड में निवेश करें.
1: आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग अकार यू नो होल्ड स्पेशली ट्रू नाउ इट इज बिकॉज वी बीन सीइंग मार्केट्स हैव बीन वोलेटाइल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ड्यू टू वेरियस रीजंस. सो लाइक यू आर सेइंग दैट व्हेन यू आर असेसिंग अ फंड व्हेन यू आर यू नो असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ फंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू नॉट गो बाय अ शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस. वी हैव टू लुक एंड लाइक आई सेड द मार्केट इज वोलेटाइल राइट नाउ सो इट्स बेटर इफ अ फंड इज डूइंग वेल और हैज डन वेल यू नो इन दिस पीरियड इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट दैट वी गो बैक अ फ्यू इयर्स एंड सी how it was performing, you know, or if a fund, you know, does well, or say let's a few months down the line when the market is stable, it'll be very pertinent to see how that fund was performing right now when the markets were volatile.
0: Right.
2: भोपाल से इस बीच हमारे साथ शंकर जुड़ रहे हैं. शंकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: अकाल जी को, मार्केट मंत्र टीम को नमस्कार. मेरा सवाल, माय क्वेश्चन इज अबाउट लार्ज कैप. लार्ज कैप फंड हैज गॉन डाउन और नॉट परफॉर्म्ड वेल बेसिकली ड्यू टू एफआईआई पुलिंग आउट लॉट ऑफ मनी. सो इफ एनीवन हैज अ सरप्लस फंड बिसाइड्स हिज रनिंग एसआईपीज, व्हाट वुड बी द राइट स्ट्रेटजी? शुड इट बी इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप बिकॉज दे आर डाउन, और वी गो फॉर कॉन्ट्रा फंड? व्हिच स्ट्रेटजी वुड वर्क बेटर इन फॉर पीपल हु हैव सम एक्स्ट्रा फंड अवेलेबल नाउ फॉर इन्वेस्टमेंट? थैंक यू.
0: शंकर जी, स्पेसिफिकली यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट इट्स समहाउ सीम लाइक दैट यू आर ट्राइंग टू यू नो कैप्चर अ मार्केट अपॉर्चुनिटी और ट्राइंग टू टाइम द मार्केट बिकॉज यू नो एज यू वर सेइंग दैट यू नो दे आर डाउन एंड आई हैव अ बिट ऑफ सरप्लस. सो हियर आई वुड लाइक टू कॉशन यू बिकॉज यू नो इट्स नेवर अ गुड आइडिया टू टाइम द मार्केट बिकॉज यू रियली डोंट नो इन विच डायरेक्शन द मार्केट वुड मूव. So, firstly, as we were talking, I mean, first of all, don't, you know, invest with the intention of making quick money or, you know, getting good returns over the short term or, you know, being opportunistic. So, the whole idea of investing in mutual funds is that you know, you diversify your risk. And also here comes the concept of SIP, wherein, you know, you stagger your investment over a period of time. You just said that you already have an ongoing SIP. And if you have a surplus, what I would rather recommend is that, you know, even with that surplus amount, you start another SIP to, you know, spread it over a period of time, maybe 6-7 months or a year, depending on how large the sum is. What you know value does it hold in your portfolio? And if you fear to you know consume that amount, it's better you know put that amount in a liquid fund and set up an STP from there. And whether to invest in large cap specifically or not, I would say it again depends on you know your whole portfolio and the time horizon and the risk appetite. You also mentioned about the contra fund. So definitely, you know, when you are investing in equities, value funds and contra funds are a good add-on to your diversified portfolio, but they may not be necessarily completely invested into just large cap stocks. They might carry a slightly more risk. So it would be better to, you know, look at your overall portfolio, and the value contra funds should be like 20-30% of your diversified portfolio.
1: We have the next caller with us online. Pradeep is calling us from Delhi. Pradeep, I will request you to just be a little more patient because I want to ask Akar here. We're talking of contra funds. For those of our listeners who do not know, what exactly is a contra fund?
0: So, contra funds usually invest in the strategies or, you know, the stocks of the companies which are currently not in favor or, you know, in
1: against
0: which,
1: the tide.
0: Right.
1: Okay, now let's take the call. Pradeep has been very patient. Pradeep, welcome to Market Mantra and ask your question, please.
4: Namaskar, Market Mantra team. Jeez. Pradeep bol raha hu Delhi se.
1: Ji, sawal puche.
4: Sir, mera na ek mid cap mein chal raha hai SIP. Beech beech mein main usme lump sum bhi karta rehta hu. To sir, usme na main round mein 5 lakh ke round mein abhi jama kara chuka hu usme paisa. लेकिन वो मिड कैप ऐसा है कि उसका पोर्टफोलियो बड़ा कंसंट्रेटेड है काफी
0: जी.
4: तो मैं सोच रहा था कि मेरे को अभी उसमें जैसे 5 लाख रुपए मेरा जमा हो चुका, क्या मेरे को कोई दूसरा मिड कैप ले लेना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन मेरा सर ये है कि मैं बीच बीच में ना लमसम करता हूँ. तो जैसे मेरा एक चल रहा है फार्मा में कर देता हूँ, मैं डिफेंस में चलता हूँ, एसआईपी मेरी चल रही है, तो बीच बीच में जैसे करेक्शन आती है तो मैं वहां लमसम कर देता हूँ. तो क्या मेरी स्ट्रेटेजी ठीक है सर? प्लीज आप बताइए.
0: देखिए, पहले जैसे आपने बताया कि आप एक मिड कैप फंड में निवेश कर रहे हैं, तो आपकी बातों से मैं जितना समझ पा रहा था, आप एक ही मिड कैप फंड

0: आपने अपना पूरा पोर्टफोलियो लगा रखा है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि देखिए डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। सारा का सारा आपका जो पोर्टफोलियो केवल और केवल एक फंड पे निर्भर नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा है कि केवल वो एक फंड में, तो आपको एक दूसरा पोर्टफोलियो, एक दूसरा मिड कैप फंड आप ऐड कर सकते हैं।
1: वो ये भी जानना, यही जानना चाह रहे कि वो क्या करें ऐसा।
0: हाँ जी, तो उस केस में आप एक और मिड कैप फंड ऐड करिए, बट केवल खाली एक यही कारण नहीं होना चाहिए कि उसमें अभी इतना अमाउंट हो गया है कि 5 लाख का उसमें पूंजी इकट्ठी हो गई, इसलिए मैं दूसरे एक और फंड में लगा देता हूँ, अब इसमें हो गया। अगर वो फंड बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और जो आपका एक पूरा पोर्टफोलियो है उसमें ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड बेट बनी हुई है और फंड्स में निवेश है, आपने ठीक ठाक करा हुआ है, इसके अलावा आपने एक डाइवर्सिफाइड फंड में भी करा हुआ है, तो उस सिनेरियो में ऐसी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप किसी एक और फंड को ऐड करें, क्योंकि वहाँ पे वरना फिर एक आप एक कलेक्टर ऑफ फंड्स बन जाएंगे और बहुत सारे फंड्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड होते रहेंगे।
1: जी आकार, कई बार ऐसा होता है, और अभी हमारे जो श्रोता हमारे साथ जुड़े उन्होंने भी वही बात बताई जो मैं अभी कहने जा रही हूँ, कि हम SIP कर रहे होते हैं और साथ के साथ हमारे पास लमसम भी अमाउंट होता है। आपने कहा हम जब शंकर जुड़े हुए थे भोपाल से, तो आपने कहा कि जो लमसम अमाउंट है अगर वो अमाउंट अलाउ करता है तो आप उसको SIP के तौर पर इन्वेस्ट करें, ना कि आप लमसम लगाएं पैसा। इसके पीछे क्या कारण है, क्या इसकी महत्ता है, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं?
0: देखिए, जब भी आप एक सिस्टमैटिक मैनर में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बेसिकली जो आपकी परचेज कॉस्ट है आप उसको एवरेज आउट कर देते हैं। जैसे कि इसको एक अगर मैं एक उदाहरण में समझाऊं, मान लीजिए आज किसी के पास एक लाख रुपए लमसम है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है और उसने पूरा का पूरा आज मार्केट में डाल दिया, और एकदम ही डालने के बाद एक हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद मार्केट नीचे गिर गया, तो जो उसका पूरा का पूरा पैसा है वो आज के एक मार्केट पॉइंट पे घुस गया है और वो एक रिस्क बन गया, एक एंट्री पॉइंट का रिस्क बन गया। वहीं पे अगर उन्होंने ये जो अमाउंट है कुछ 3 महीने या 6 महीने में स्प्रेड करा होता तो वो सारा का सारा पैसा आज इन्वेस्ट नहीं हुआ,
1: तुरंत लाल में नहीं जाता।
0: बिल्कुल, तुरंत लाल में नहीं जाता और वो आगे आने वाले समय में जब मार्केट नीचे गिरा होता वो ज्यादा खरीद पाते, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि मार्केट सस्ता हो गया, हमने ज्यादा चीजें खरीद ली। बिल्कुल, तो एक आपकी जो परचेज कॉस्ट है उसको एवरेज आउट कर देता है और आपका जो रिस्क है वो उससे कंपैरेटिवली मिनिमाइज हो जाता है मार्केट में गलत एंट्री पॉइंट में घुसने का।
1: बिल्कुल, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फरीदाबाद से, इनका नाम है सुभाष। सुभाष जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार सर
1: जी, सवाल पूछे सुभाष जी।
0: नमस्कार सुभाष जी।
2: सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि निफ्टी इंडेक्स फंड को अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? एक्सपेंस रेशियो होनी चाहिए मेन, या कुछ और क्राइटेरिया होना चाहिए?
0: नहीं, मेन उसमें एक्सपेंस रेशियो रहेगा। देखिए, जितने भी सारे जो इंडेक्स फंड्स होते हैं ये फंड्स ऐसे नहीं होते कि इनमें एक फंड मैनेजर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये फंड्स केवल आपका जो मार्केट है, जैसे निफ्टी आपने खुद बोला, उसको ट्रैक करेंगे। जिस रेशियो में अलग अलग स्टॉक्स होते हैं निफ्टी के इंडेक्स में, ये फंड्स आपका सारा पैसा उसी प्रपोर्शन में उन्हीं स्टॉक्स में, उतने ही नंबर ऑफ स्टॉक्स में निवेश करते हैं। तो आमतौर पर जितने भी निफ्टी के या कोई से भी इंडेक्स फंड्स है जो एक सेम इंडेक्स को ट्रैक कर रहे, उनके रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता। उनके रिटर्न्स में जो अंतर के कारण होते हैं वो दो होते हैं केवल, एक होता है आपका एक्सपेंस रेशियो और दूसरा होता है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर को अगर मैं एकदम आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो ये हो गया कि वो जो उस इंडेक्स को ट्रैक करने का काम कर रहा है उसको डुप्लीकेट करने का, रिप्लीकेट करने का, वो कितने अच्छे से कर पा रहा है। अगर ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहा होगा तो फिर ज़्यादा डिफरेंस होएगा, अदरवाइज डिफरेंस कम होएगा। तो आप केवल एक्सपेंस रेशियो पे सॉर्ट करिए शुरुआती तौर पे, और जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना अच्छा, और आप उस इंडेक्स फंड का चुनाव कर सकते हैं।
1: वी डू हैव अ नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली, सुजन नेगी इज कॉलिंग अस फ्रॉम देयर, बट बिफोर वी टेक योर कॉल सुजन, प्राची, व्हाई डोंट यू गिव अस हाउ द गोल्ड सिल्वर प्राइसेस वर ड्यूरिंग द वीक?
3: बिल्कुल श्रोताओं, अन्य खबरों में सोने और चांदी के भाव समझ लेते हैं। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई। मजबूत अमरीकी डॉलर, अमरीकी ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी और निवेशकों की धारणा इस उम्मीद से भी प्रभावित हुई कि अमरीकी फेडरल रिजर्व सितंबर की बैठक में भी आक्रामक मौद्रिक नीति का रुख बनाए रखेगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर अनुबंध वाले सोने का वायदा भाव सप्ताह के दौरान 2.2% गिरकर 1,52,767 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी का वायदा भाव 2% की गिरावट के साथ

0: 231,922 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया। कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर अनुबंध वाला सोने का वायदा भाव सप्ताह के दौरान 1.2% की गिरावट के साथ $4,441.90 प्रति ट्राय आउंस पर बंद हुआ। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी का वायदा भाव 1.4% फिसल कर $66.04 प्रति ट्राय आउंस पर आ गया। और सुजान नेगी जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
1: हाँ जी, मार्केट मंत्रा टीम को नमस्ते,
0: बहुत अभिनंदन।
1: हाँ जी मैम, मेरे दो सवाल हैं। पहला तो ये है कि मैंने SBI कॉन्ट्रा फंड में मनी मतलब मैंने लगा रखी है, उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है मेरे पैसे, तो वो माइनस में दिखा रहा है, तो क्या मेरे को स्विच ओवर कर देना चाहिए किसी दूसरे फंड में? और करना चाहिए तो कौन से फंड, मुझे को अब कौन सा फंड लेना चाहिए? और स्विच करने का मतलब चार्ज लगता है क्या? तो यही कुछ क्वेश्चन है मैम मेरे।
2: देखिए सुजन जी, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी पिछले कुछ समय में मार्केट बहुत अच्छा नहीं रहा है और जो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स है वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, तो केवल उस शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के वजह से आप एकदम से ऐसा डिसीजन ना लीजिए कि आपको उस फंड से जाना चाहिए। अभी थोड़ा सा उसमें रहकर कुछ उस फंड को थोड़ा और समय दीजिए और देखिए उसका जो रिटर्न्स है। यहीं पे दूसरी चीज़ आती है, जो एक आपने काफ़ी अहम क्वेश्चन पूछा कि अगर आप स्विच करते हैं तो क्या उस स्विच करने के चार्जेस लगेंगे। देखिए, जब भी आप किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरे में जाते हैं या निकालते हैं तो केवल दो तरीके के चार्जेस होते हैं, या जो एक कॉस्ट होती है उनको चार्जेस नहीं बोलना चाहिए, जो आपको इम्पैक्ट करेगी। पहला है कि उस पर जो भी टैक्स है, टैक्स हमारा म्यूचुअल फंड्स में कैपिटल गेन्स के तौर पे लगता है, और जो इक्विटी फंड्स है यहाँ पे अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा होता है तो आपका जो टैक्स है वो 12.5% रहता है। लेकिन यहाँ पे एक न्यूएंस है कि हर फाइनेंशियल ईयर में इक्विटीज़ के और इक्विटी फंड्स के जो भी आपकी गेन्स होते हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा होल्डिंग पीरियड के होते हैं, वो पहले 1.25 लाख पर टैक्स की छूट होती है, उसके बाद 12.5% लगता है। और अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है तो आपका जो टैक्स उस गेन्स पे वो 20% लगता है। दूसरा एक कॉस्ट रहता है एग्जिट लोड का, अगर आप एक फंड के एक डिफाइंड पीरियड से बहुत जल्दी निकालते हैं तो वहाँ पे वो आपके NAV का कुछ परसेंटेज काट लेते हैं।
0: दिल्ली से हमारे साथ प्रकाश जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपने सवाल पूछिए।
3: मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार।
0: नमस्कार
3: रस्तोगी जी को भी नमस्कार।
2: नमस्कार
3: सर, मेरे को 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं 5 साल के लिए, तो दो अच्छे मल्टी कैप फंड बता सकते हैं?
0: फंड स्पेसिफिक तो हम यहाँ पर जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका कोई भी अन्य सवाल हो तो ज़रूर अगले सप्ताह आप संडे को हमें कॉल करें, हमें संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
4: लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। द 7 कोर ओपेक प्लस कंट्रीज सऊदी अरेबिया, रशिया, इराक, कुवैत, Kazakhstan, Algeria and Oman met virtually today to review global market conditions and outlook. They decided to keep the grouping's oil output policy unchanged for October amid global uncertainty. The decision comes after OPEC Plus increased production by around 188,000 barrels per day for September, completing the rollback of a voluntary production cut of around 1.65 million barrels per day that had been introduced in 2023. The meeting comes against the backdrop of continuing disruptions to the oil exports, including those linked to the conflict involving Iran and disruption around the Strait of Hormuz. These disruptions have limited the impact of OPEC Plus production decisions on oil, global oil supplies and prices. And let's take the next call. Kunj Bihari is calling us from Mathura. Welcome to the program. Please ask your question.
5: Dhanyawad.
4: Ji.
5: मैं पूछना चाहूंगा कि आप बताते हैं कि आपका जो पैसा है एक मैनेजर के द्वारा लगाया जाता है, वो मैनेजर किसके द्वारा बिठाए जाते हैं, उनको क्या बेनिफिट है जो हमारा पैसा कंपनियों में इधर लगाते हैं? क्या वो हमारे फायदे के लिए ही ठीक है, क्या कभी वो हमारे को लॉस भी करा सकते हैं?
2: जो फंड मैनेजर्स होते हैं ये उस फंड म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा नौकरी पे रखे जाते हैं, उनको एक काम असाइन किया जाता है और वो लोग एकदम प्रोफेशनल्स होते हैं। सो फंड मैनेजर्स का रोल ही होता है कि एक जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है, आप और मेरे जैसे लोग, अगर हम लोग शेयर मार्केट में ये चीज़ नहीं चेक कर सकते कि कब कौन से स्टॉक में लगाना है, किस कंपनी में लगाना है, तो जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो इस चीज़ की पूरी ट्रेनिंग पढ़ाई करके प्रोफेशनल तरीके से और एक काम करते हैं। सो उनका फ़ायदा बेसिकली ये है कि उनका जॉब है,

0: दे आर बीइंग पेड फॉर दिस।
1: अन्य खबरों में, घरेलू निवेशकों का ध्यान अगले सप्ताह पश्चिम एशिया में होने वाले घटनाक्रम, कमोडिटी कीमतों, बॉन्ड यील्ड में उतार चढ़ाव और मुद्रा बाजार में होने वाले बदलावों पर रहेगा। प्राथमिक बाजार में मुख्य बोर्ड के 12 आईपीओ अगले सप्ताह सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाले हैं। अमरीका में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक और साप्ताहिक बेरोजगारी दावों के आंकड़े समेत प्रमुख आर्थिक संकेतक निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। इस बीच जापान, ब्रिटेन और यूरोजोन के जीडीपी के अनुमान भी जारी किए जाएंगे। चीन में पीपीआई और व्यापार से जुड़े आंकड़े प्रमुख आर्थिक संकेतकों में शामिल होंगे जिन पर निवेशकों की नजर होगी।
2: More than 500 institutional investors, finance ministers and business leaders will participate in the inaugural iBRICS summit on the sidelines of BRICS summit in New Delhi on the 12th and 13th of this month. The two-day summit is designed to connect sovereign capital with bankable infrastructure, energy and digital capacity projects across 21 BRICS member states and partner nations. Sovereign wealth funds, pension funds and family offices attending the iBRICS summit manage a total wealth of $1 trillion. They will discuss cross-border investments, non-dollar settlements and payment systems among BRICS economies. Discussions are also expected on linking national fast payment systems such as India's Unified Payments Interface or UPI and Brazil's PIX, along with interoperability between central bank digital currencies. The summit comes at a critical juncture as BRICS economies adapt to shifting trade dynamics, US tariff pressures and high dollar clearing costs.
1: आकार कार्यक्रम में आने के लिए मेरे और अनुभा के और हमारे तमाम श्रोताओं के और कॉलर्स के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: And before we close, a look at the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls upon young Indians to build global consulting, accounting, financial and legal firms that can lead the world. Foreign portfolio investors were net sellers of Indian equities in the first week of September, and in bullion market, gold and silver prices declined last week. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
1: Namaskar. Namaskar.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढह गई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने बताया है कि चार लोगों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई, दो की हालत गंभीर है, जबकि एक व्यक्ति को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि अब तक 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। पुलिस के अनुसार स्थानीय जांच में पता चला कि इमारत 40 से 50 वर्ष पुरानी थी और हादसे के समय इसके बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर दमकल की 18 गाड़ियां तैनात की हैं। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एहतियात के तौर पर पास की एक इमारत को भी खाली करा लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में इमारत ढहने की घटना के बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर भी प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की है। उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी समन्वित अभियान चलाने का आह्वान भी किया है। श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और

0: पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
1: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए एक रोड मैप बनाया है। 26 से 29 को हमने मिशन मोड अवधि के रूप में चिन्हित किया है, समय सीमाएं तय की है, 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है, एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित फोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी हैं। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। श्री राधाकृष्णन आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कोयला मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि केंद्र से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों में कम बिजली का उत्पादन हो रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड पंजाब सहित पूरे देश में बिजली उत्पादन के लिए निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। ईरान और अमरीका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा है कि उसके एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। IRGC ने दावा किया है कि इन पोतों ने ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी में हिस्सा लिया था। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया है। अमरीकी सेना के अनुसार यह कार्रवाई उस समय की गई जब IRGC ने क्षेत्र में गश्त कर रहे अमरीकी नौसेना के 2 युद्धपोतों की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Union Home Minister Amit Shah has said that a drug-free youth will play a crucial role in achieving the vision of a developed India by 2047. Mr. Shah was addressing a press conference at Panaji in Goa. He said the government has prepared a 3-year roadmap to make country drug-free by 2029. He said the roadmap will be based on a 4-pillar approach aimed at dismantling narcotics networks.
3: Between 2014 and 2026, the quantity of drugs seized has increased significantly to more than 1 crore 19 lakh kilograms. The value of these seized drugs stand at approximately 1.89 lakh crore rupees. Between 2014 and 2026, the government led by Narendra Modi has destroyed approximately 48 lakh 66,000 kilograms of drugs.
1: Vinisht karne ka kaam Narendra Modi sarkar ne kiya hai.
2: Mr. Shah also highlighted the government's development efforts in Jammu and Kashmir. He said the Union Territory is now on the path of progress and development, while Naxalism is becoming a thing of the past under the Narendra Modi-led government. Meanwhile, the Union Home Minister has cut short his visit and left for Delhi following the collapse of a multi-story building in the national capital. Mr. Shah reached Panaji last night on a 3-day visit to Goa. A major rescue operation is underway after a multi-story building housing a student paying guest or PG accommodation collapsed in Satiniketan area of Delhi this afternoon. According to the All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, New Delhi, 4 persons were brought to the trauma center for treatment. Of them, 1 person was brought dead, 2 are in critical condition, and 1 has been discharged. Meanwhile, the Delhi police has said that 6 persons have been rescued so far and shifted to hospitals. Several people are still fear trapped. The police said during the local inquiry, it was revealed that the building was 40 to 50 years old and some repair work was underway in

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி ஏஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढह गई. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने बताया है कि 8 लोगों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लाया गया. इनमें से 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है, जबकि दो की हालत गंभीर है. दिल्ली पुलिस ने बताया है कि अब तक 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. पुलिस के अनुसार स्थानीय जांच में पता चला कि इमारत 40 से 50 वर्ष पुरानी थी और हादसे के समय इसके बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था. उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि एहतियात के तौर पर पास की एक इमारत को भी खाली करा लिया गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली. गृह मंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और NDRF आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं. घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है. श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. इसके अतिरिक्त श्री शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे. दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया. श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करना था. इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की है. उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी समन्वित अभियान चलाने का आह्वान किया. श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जाँच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है.
2: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए एक रोड मैप बनाया है. 26 से 29 को हमने मिशन मोड अवधि के रूप में चिन्हित किया है. समय सीमाएं तय की है. 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है. एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन,

0: चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। श्री राधाकृष्णन आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कोयला मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि केंद्र से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों में कम बिजली उत्पादन हो रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड पंजाब सहित पूरे देश में बिजली उत्पादन के लिए निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि उसकी एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमेरिकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमेरिका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। अमरीकी सेना के अनुसार ये कार्रवाई उस समय की गई जब IRGC ने क्षेत्र में गश्त कर रहे अमरीकी नौसेना के 2 युद्धपोतों की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अदिति लुम्बा। Union Home Minister Amit Shah today outlined a 3-year roadmap to make India drug-free by 2029, calling for a coordinated national campaign against narcotics. Mr. Shah was addressing a press conference in Goa during his 3-day visit to the state. He said the government has strengthened enforcement, intelligence sharing, financial investigations and rehabilitation measures since 2019. More than 1.19 crore kilograms of drugs, valued at about 1,89,000 crore rupees, were seized between 2014 and 2024, while over 48.66 lakh kilograms were destroyed. The government has set a target of dismantling 100 international and interstate drug networks, bringing 100 narcotics-related fugitives to India and destroying 100 clandestine drug laboratories over the next 3 years. A multi-story building collapsed in Satyaniketan area of New Delhi this afternoon. According to the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, 4 persons were brought to the trauma centre for treatment. Of them, 1 person was brought dead, 2 persons are in critical condition and 1 was discharged. Meanwhile, the Delhi police has said that 6 persons have been rescued so far and shifted to hospitals. The police said during the local inquiry, it was revealed that the building was 40 to 50 years old and some repair work was underway in the basement of the building when the incident happened. The Delhi Fire Service has deployed 18 fire tenders for the relief and rescue work at the location. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu has directed all concerned agencies, including the Delhi Police, Delhi Fire Service and Delhi Disaster Management Authority, to work in complete coordination to ensure swift rescue efforts on the ground. Chief Minister Rekha Gupta has directed all concerned agencies to maintain close coordination and ensure a swift response. Union Home Minister Amit Shah has expressed grief over the incident. In a social media post, Mr. Shah said that he had spoken with Delhi Chief Minister Rekha Gupta, Delhi Police Commissioner and the Director General NDRF and took stock of the situation. Vice President C.P. Radhakrishnan has urged young people to stay away from drugs and encourage their friends to say no to drugs. Addressing the Golden Jubilee celebrations of Gitanagar College in Guwahati today, he stressed that students must make responsible choices and safeguard their time, health and future. C.P. Radhakrishnan said, India's young population is its greatest strength and the opportunities emerging in areas such as artificial intelligence, biotechnology, space, research and entrepreneurship can enable the youth to play a leading role in building a developed India. Stating that quality

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। सोशल मीडिया के रचनात्मक उपयोग का भी आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
2: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं।
3: 2 टीमें करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित

0: लोगों की मदद की जा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्री नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस बीच श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके अतिरिक्त श्री शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा भी जारी की है।
1: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
1: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26 लाख किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा पकड़ा गया। उसका मूल्य 1,89,000 करोड़। 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग विनिष्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर कर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
5: Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
0: Assam ke

0: विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ. सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है। देश व्यापार, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी इस विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। डॉ. यादव 3 दिन की दुबई यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में अधिक निवेश और नए उद्योग आकर्षित करना है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमेरिकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमेरिका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में संदिग्ध जहरीली और अवैध शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक अन्य अधिकारी को जिले से हटाकर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के शिकार के खिलाफ चल रहे अभियान में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बाघों के शिकार के आरोपी शेरू पारधी उर्फ शेरू सिंह को शहडोल के ब्योहारी से गिरफ्तार किया है। शेरू पारधी कटनी का रहने वाला है और करीब 1.5 साल से फरार था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कल आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कई नदियां अब भी उफान पर हैं और 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
4: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने 800 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और बेघर परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिए। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिनों तक और पश्चिमी जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। गंगा, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा के बढ़ते

0: जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चीन के शेंजेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इस वर्ष ये उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Multi-story building collapses in Satyaniketan area of Delhi. 3 persons dead and 11 evacuated. Several feared trapped as rescue operation continues. Home Minister Amit Shah announces a 3-year roadmap for drug-free India by 2029, outlines 4-pillar strategy to dismantle narcotics networks. Vice President C.P. Radhakrishnan urges youth to shun substance abuse, lead healthy and disciplined lives, calls for constructive use of social media. Science and Technology Minister Jitendra Singh calls for expanding India's growing startup ecosystem beyond metropolitan centres, stresses stronger science, startups and industry linkages. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches maiden title at China Masters in Shenzhen. And now the news in detail. A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi this afternoon. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the mishap site and took stock of the situation. Talking to media after the visit, Ms. Gupta said, relief and rescue operations are continuing on a war footing. Ms. Gupta said, those found responsible for the incident will not be spared.
2: Whether it is the building owner or any official found responsible, guilty will not be spared. It was an old building and was undergoing construction and renovation, and excavation in the basement reportedly caused a pillar to shift, leading to the collapse. The building was being used as a paying guest accommodation with children inside. All agencies are working round the clock with saving lives a top priority. The rescue operation will continue with full resources and all officials are present at the site.
1: Later, the Chief Minister visited All India Institute of Medical Sciences AIIMS Trauma Centre to meet the individuals undergoing treatment at the hospital. She instructed the team of doctors to ensure every necessary medical assistance. Ms. Gupta said the Delhi government is also in contact with the families of victims. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu also reached the mishap site and oversaw the rescue operations. Mr. Sandhu directed all concerned agencies to work in complete coordination to ensure swift rescue efforts. Talking to Media Inspector General of the National Disaster Response Force, N.S. Bundela said that 2 NDRF teams comprising 70 personnel are currently working on the site.
3: Two teams are on the spot.

0: बच्चों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे रूपक, राखी गढ़ी, मिट्टी के नीचे सोया, महानगर। आलेख है डॉक्टर अप्पू सहारण का, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार।
1: आज की यात्रा किसी सड़क या ट्रेन की नहीं, यह यात्रा है समय की रेखा पर पीछे लौटने की। हमारी आज की आधुनिक दुनिया से मिलकर हम पहुंच रहे हैं लगभग 7000 वर्ष पीछे। हरियाणा के हांसी जिले की उस पावन धरा के गर्भ में दबा है सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक विशाल सुनियोजित महानगर। पक्की ईंटों के मकान, चौड़ी सड़कें, वैज्ञानिक जल निकासी, कुएं, दस्तकार, व्यापारी और कृषि पर आधारित एक समृद्ध समाज, यही पहचान है राखी गढ़ी की।
2: हजारों वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में छिपा इतना बड़ा महानगर आखिर सामने कैसे आया? क्या यह किसी आकस्मिक संयोग का परिणाम था या निरंतर पुरातात्विक साधना का?
1: पुरातत्वविद व महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर रहे अमर सिंह ने कई वर्षों तक पढ़ाया है। वे समय समय पर छात्रों को राखी गढ़ी में हो रहे उत्खनन कार्यों को दिखाने के लिए ले जाते रहे। वे बताते हैं,
3: जहाँ तक राखी गढ़ी के प्रास्थल की खोज का प्रश्न है, हमारी जानकारी के अनुसार झज्जर गुरुकुल के संस्थापक व प्राचीन वस्तुओं के संग्रहकर्ता आचार्य भगवान देव, जिन्हें स्वामी ओमानंद सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1960 के दशक के प्रारंभ में राखी गढ़ी प्रास्थल का दौरा किया। इस दौरान उनको यहाँ से कुछ प्राचीन बर्तन तथा वस्तुएं मिली, लेकिन वह इन वस्तुओं के ऐतिहासिक महत्व को कैम नहीं समझ पाए। उन्होंने ये अवशेष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर सूरज भान को दिखाए। इसके पश्चात डॉक्टर सूरज भान ने 1963 में राखी गढ़ी का दौरा किया और वहां से प्राप्त अवशेषों की पहचान करके आधिकारिक रूप से ये सिद्ध कर दिया कि ये अवशेष भारत की प्राचीन सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। उन्होंने राखी गढ़ी के महत्व को समझकर आसपास के क्षेत्र का व्यापक रूप से सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य अनेक ऐसे ही प्रास्थल प्रकाश में आए। राखी गढ़ी की खोज ने सिंधु सभ्यता के बारे में प्रचलित इस धारणा को ही बदल दिया कि यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी क्षेत्र तक ही सीमित थी, बल्कि ये पुष्ट कर दिया कि वह भारत में सरस्वती नदी तथा इसके आसपास के विस्तृत क्षेत्र में भी ये फली फूली। इसीलिए सिंधु सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया गया है। अंततः 1997-98 के सत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने यहाँ निरंतर 3 सत्रों तक उत्खनन किया। उत्खननों के परिणाम स्वरूप यहाँ पर प्रारंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के सांस्कृतिक अवशेष मिले। 2011 से 16 के बीच पुणे के डेक्कन कॉलेज के तत्कालीन कुलपति एवं प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर वसंत शिंदे के नेतृत्व में उत्खनन किए गए। टीला संख्या 7 से हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान भी मिला, जिसमें नर और

0: माता मानव कंकाल में 2022-23 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त महानिदेशक संजय मंजुल ने भी यहां पर उत्खनन कार्य किया। अभी भी 2025-26 के सत्र में यहां पर उत्खनन शाखा नोएडा 2 के मनोज सक्सेना के निर्देशन में कार्य जारी है।
1: सभ्यताएं हमेशा नदियों के आंचल में पनपती हैं। रावी के तट पर हड़प्पा का विस्तार हुआ और सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो का। वहीं राखीगढ़ी का सीधा संबंध था सरस्वती दृषद्वती के सूखे मैदानी क्षेत्र से, जो कभी अत्यधिक उपजाऊ था। राखीगढ़ी केवल एक शहर नहीं था, बल्कि इस पूरे नदी क्षेत्र का व्यापारिक और कृषि केंद्र था। यहाँ की समृद्ध खेती और जल प्रबंधन ही इस विशाल नगर के भरण पोषण का आधार था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर रविंद्र

0: आधार था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट कहते हैं कि
1: दृश्यत्वती नदी सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदी थी। ये नदियाँ शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती थी, जिसमें सरस्वती उत्तर की ओर तथा दृश्यत्वती दक्षिण की ओर बहती थी।
2: ये एक घग्गर की तरह एक सहायक नदी थी दृश्यत्वती, जो आपके शिवालिक निकल के और फिर आगे चल के ये करनाल और पानीपत के बीच से होते हुए और कई तीर्थ, महाभारत में बहुत तीर्थों का स्थान का धाम है, तो इस सफीदों यानी सप्त देवी और सर्व दमन के पास जाती थी, फिर पश्चिम को मुड़ जाती थी और इसके पास अश्विन वराह जीद और राम राय ये पवित्र तीर्थ स्थान थे और राम राय में इसके चार द्वार थे, उसमें राम राय था और राम राय के पास आपका राखी घड़ी बसा हुआ है। और सरस्वती से मैंने एक संबंध बता दिया आपको और इसकी जो धारा है वो आज भी आसन वराह जी राम राय अब होते हुए हांसी हिसार सिसवाल मातर श्याम भादरा रावस्तर सोथी होते हुए ये सरस्वती से संगम करती है सूरतगढ़ के पास, सरस्वती से इस पर संबंध है।
0: ऋग्वेद की ऋचाओं में इन नदियों किनारे भरतवंशी राजाओं द्वारा यज्ञ करने का वर्णन मिलता है। रविंद्र सिंह बिष्ट मानते हैं कि सरस्वती के दक्षिण में तथा दृश्यत्वती के उत्तर में जो क्षेत्र है उसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है।
2: नदी नदी के किनारे है, अब वो लोग तो प्राय हो गई है, लेकिन एक जमाने में वो शिवालिक से लेके तो जहाँ तक सरस्वती संगम होता था ये सूरतगढ़ के पास एक प्राचीन स्थान है रंग महल के पास इसका मेल होता था सरस्वती का, इसका इतना महत्व था। मैं आपको ऋग्वेद की बात बताता हूँ कि उसमें एक श्लोक आता है कि दृश्यत्वत्याम मानुष आपयायाम सरस्वत्याम रेव दग्नि दिदीहि, इसका मतलब है कि दृश्यत्वती आपया और सरस्वती इतनी पवित्र नदियाँ थी कि इसके किनारे भरत वंश के राजकुमार देव स्वस्थ और देव वाक इन तीनों नदियों के किनारे यज्ञ किए। हो सकता है एक स्थान उसका राखी गढ़ी रहा।
0: राखी गढ़ी लगभग 350 से 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 9 टीलों का समूह है। यहाँ परिपक्व हड़प्पा काल के साथ साथ पूर्व हड़प्पा काल के साक्ष्य भी मिले हैं। ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें, नालियां और अग्निवेदियां यह सिद्ध करती हैं कि यहाँ का समाज प्रशासनिक और नागरिक दृष्टि से अत्यंत परिपक्व था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी एवं वर्तमान उत्खननकर्ता मनोज सक्सेना ने बताया,
3: राखी गढ़ी ग्राम दो गांव राखी खास और राखी शाहपुर को मिलाकर बना है। राखी गढ़ी के आसपास 9 टीले हैं जिनका विस्तार लगभग 350 हेक्टेयर में फैला है, जो इसे सिंधु सभ्यता का अब तक का सबसे विशाल नगरीय केंद्र बनाता है। राखी गढ़ी ग्राम टीला संख्या 4 एवं 5 पर बसा है, तो यहाँ उत्खनन का कार्य संभव नहीं है, परंतु टीला संख्या 5 पर कुछ क्षेत्र में हमें कार्य करने की जगह मिली और जहाँ पर हम लोगों ने इस वर्ष के जो एक्सकेवेशन है उसमें हमने कुछ ट्रेंच वहाँ लगाए और हमें कुछ घरेलू संरचनाओं की कच्ची मिट्टी की ईंटों के से निर्मित हैं वो प्राप्त हुई हैं। टीला संख्या 1 से 9 तक के अध्ययन से हमें पूर्व हड़प्पा प्रारंभिक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा काल के निरंतर सांस्कृतिक विकास और अधिवास के अनुक्रम को दर्शाते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ से उत्खनन में सुविकसित नगर नियोजन के प्रमाण मिले हैं, जिसमें सड़कों को समकोण पर काटना, जल निकासी की उचित व्यवस्था, पक्की ईंटों की नालियां, कच्ची मिट्टी की ईंटों या सन ड्राइड ब्रिक्स का उपयोग घरेलू संरचनाओं में मिला है और 4-2-1 के अनुपात वाली ईंटों का प्रयोग मिला है। राखी गढ़ी की विशालता एवं विस्तार को देखते हुए इसे सिंधु सभ्यता की पूर्वी राजधानी माना जा सकता है। टीला संख्या 2 और 7 के उत्खनन में हमें सर्वाधिक आश्चर्य में डाला। टीला संख्या 2 से अर्ध बहुमूल्य पत्थरों या सेमी प्रीशियस स्टोन्स के मनकों का प्रतिशत पूर्व के उत्खननों की तुलना में बहुत अधिक है।
1: राखी गढ़ी से कई हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली हैं। उत्खनन के दौरान अनेकों ऐसी छोटी छोटी चीजें प्राप्त हुई जो इस सभ्यता के लोग अपने दिनचर्या में उपयोग

0: करते थे। प्रोफेसर अमर सिंह बताते हैं,
1: तांबे और सोने के आभूषण, पति मिट्टी और सेलखड़ी से निर्मित मोहरें तथा मनके बनाने के केंद्र मिले हैं, जो इसके विकसित शहरी रूप को दर्शाते हैं। चाक पर बने मिट्टी के बर्तन, जिन पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्रण, चर्ट पत्थर से बनी ब्लेड्स, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के अनेक प्रकार के मनके, पकी मिट्टी से निर्मित मनके, चूड़ियां, पशु या मानव की मूर्तियां, खिलौना गाड़ियां आदि भी प्रमुख रूप से मिली।
0: राखी गढ़ी वासी मामूली वस्तुओं से लेकर लैपिस लाजुली पत्थर से बने श्रृंगार के कीमती आभूषणों का अक्सर प्रयोग किया करते थे।
2: यहाँ से हमें कार्नेलियन, लैपिस लाजुली, जास्पर आदि के मनके, सोने के मनके, चर्ट के ब्लेड, टेराकोटा एवं शेल की बैंगल्स, अंजन सलाखा आदि के साथ साथ करीब करीब 2 मीटर मोटी दीवारों की घरेलू संरचनाएं भी प्राप्त हुई हैं। टीला संख्या 7, जो कि दफन स्थल या बरियल माउंड है, से 7-8 मानव कंकाल मिले हैं, जिसमें एक मानव कंकाल के पास से 17 सोने के मनके, 2 सोने के फाइल और 42 मृदभांड मिले हैं, जो उस समय की समृद्ध सांस्कृतिक समाधि परंपरा और आर्थिक संपन्नता को दर्शाते हैं।
3: अब प्रमाणित हो चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सुदूर क्षेत्रों में फैली अन्य सभ्यताओं के साथ मेलजोल होने के साथ साथ अच्छे व्यापारिक संबंध भी थे। राखीगढ़ी प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा होगा और यहाँ से भी दूर दूर तक व्यापार किया जाता होगा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विकास पवार मानते हैं कि राखीगढ़ी के अन्य सभ्यताओं के साथ पारस्परिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे होंगे।
4: पुरातात्विक उत्खननों से अनेकों प्रकार के अर्धकीमती पत्थरों के मनके अवशेष रूप में मिले हैं, जिनका कच्चा माल राखीगढ़ी के आसपास नहीं मिला। ये कच्चा माल सुदूर हड़प्पा स्थलों तथा दूर विदेशी हड़प्पा पुरास्थलों से निर्यात किया जाता था। उदाहरण के रूप में शंख गुजरात से, तांबा राजस्थान में स्थित खेतरी की खानों से, राखीगढ़ी के उत्खननों में जो मानकीकृत बात बटकरे एवं मोरे मिली हैं, उससे यह साबित होता है कि आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के नियम एक समान थे। विदेशी क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध के फलस्वरूप राखीगढ़ी का व्यापार क्षेत्र अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, ओमान और फारस की खाड़ी तक भी था। वहाँ से कच्चे माल के रूप में अर्धकीमती पत्थर अवशेष रूप में मिलते हैं। इस प्रकार राखीगढ़ी पुरास्थल का व्यापारिक मेलजोल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी क्षेत्रों तक था।
0: अब सवाल उठता है कि इस कांस्य युगीन सभ्यता का निर्माण करने वाले लोग कौन थे? ये लोग कहीं से आए होंगे या फिर यहीं के गांवों व नगरों के मूल निवासी रहे होंगे। राखीगढ़ी के टीला नंबर 7 से प्राचीन कंकाल मिले हैं। वैज्ञानिकों ने इनका विस्तृत डीएनए अध्ययन व विश्लेषण किया है। एक महिला के प्राचीन कंकाल से माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए अध्ययन में U2B2 माइटोकॉन्ड्रिया हैप्लोग्रुप मिला है। डेक्कन कॉलेज के पूर्व कुलपति प्रोफेसर वसंत शिंदे का मानना है,
5: राखीगढ़ी में जो हड़प्पन कंकाल मिले हैं उनकी डेट लगभग 4,500 साल पुरानी है, तो उन लोगों का डीएनए सबसे प्रथम भारत में निकाला गया है। और इसके पहले हमको हड़प्पन लोग कौन थे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसमें मतभेद थे, कुछ लोग बोलते थे कि हड़प्पन लोग यहाँ के थे, कुछ लोग बोलते थे कि वो बाहर से मेसोपोटामिया से आए होंगे, उन्होंने इस सभ्यता को विकसित किया होगा ऐसा मानते थे। लेकिन इस डीएनए से जिसका रिजल्ट हमने एक दुनिया में सबसे प्रेस्टिजियस साइंटिफिक जर्नल है सेल, उसमें हम उसके रिजल्ट हमने पब्लिश किया है। और इसको एक दुनिया में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जीनोमिक्स, उसने इसको अप्रूव किया है। और उन्होंने बोला कि 2019 में जो 9 ब्रेक थ्रू रिसर्चेस हुए थे दुनिया में, उसमें राखीगढ़ी का जिक्र उन्होंने किया है। इसका मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो उसका रिजल्ट ये मिलता है कि हड़प्पन लोगों का जो जीन्स थे, जो डीएनए था, वो बहुत ही डिस्टिंक्ट था, जिसको हम एंशिएंट एंसेस्टर साउथ इंडियन बोलते हैं। वो जीन्स था जिनकी शुरुआत लगभग 12,000 साल पहले हुई थी। 12,000 साल के बाद इसमें धीरे धीरे म्यूटेशन शुरू हो गया और एक डिस्टिंक्ट जीन तैयार हो गया, उसको हम एंशिएंट एंसेस्टर साउथ इंडियन जीन्स बोलते हैं। और वही जीन्स हड़प्पन लोगों में आए। और ये जो जीन्स है वो प्योरली इंडिजिनस लोगों के जीन्स है, यहाँ के लोगों के जीन्स है। तो इसे पता चलता है कि हड़प्पन

0: लोग थे, यहाँ के थे, ये पता चलता है। उसके बाद हमने ये भी किया कि हमने मॉडर्न लोगों का सैंपल्स लगभग 140 अलग अलग जो गुट है साउथ एशिया में, उनके सैंपल्स हमने 3500 सैंपल्स मॉडर्न लोगों के सैंपल्स हमने इकट्ठा किया और उसका हमने विश्लेषण करके उसको हम हरप्पन जो सैंपल्स मिले थे राखीगढ़ी उससे हमने जोड़ा, तो उससे पता चलता कि साउथ एशिया के जो मेजर पॉपुलेशन है हमको एक इंडिकेशन मिलता है अंडमान निकोबार से लेके लद्दाख कश्मीर तक और अफगानिस्तान से लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट तक जो सब लोगों हरप्पन लोगों के ही वंशज है इसका एक प्रमाण मिलता है। वो लोग क्या रिलीजन फॉलो करते हैं, क्या कास्ट फॉलो करते हैं उसका कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये पता चलता है या एक अंदाज लगता है कि अभी के जो मॉडर्न लोग है वो हरप्पन लोगों के वंशज है, तो ये कंटिन्यूटी हमको दिखाई देते है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हमको राखीगढ़ी से मिला है।
1: राखीगढ़ी की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी जिसमें शिकार, मछली पकड़ने और संग्रहण के जरिए संसाधनों का कुशल प्रबंधन किया जाता था। कृषि आधारित पशुओं के साथ साथ जंगली जानवरों के होने के भी प्रमाण मिले हैं।
2: खुदाई से स्पष्ट होता है कि पालतू जानवर राखीगढ़ी में जीवन का केंद्र थे। महत्वपूर्ण पालतू जानवर गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर थे। इनका उपयोग आर्थिक और व्यवहारिक कार्यों के लिए भी होता था। गायों का उपयोग परिवहन के लिए और खेतों में काम करने के लिए किया जाता था। बैल और भैंस खेतों में हल चलाने और सामान ले जाने का कार्य करते थे। गाय और भैंस की गोबर भी एक बहुमूल्य संसाधन थी। लोग इसका उपयोग खेतों में खाद के रूप में, फर्श और दीवारों पर प्लास्टर के लिए और ईंधन के रूप में करते थे। इन अनेक उपयोगों से पालतू जानवर केवल खाने का स्रोत ही नहीं रहते, वे खेती, निर्माण और घरेलू जीवन के लिए अनिवार्य थे। भेड़ और बकरी से मांस, दूध और ऊन या बाल प्राप्त होते थे। सुअर भी पाए गए हैं, कुत्ते के अवशेष भी मिले हैं। संभव है कि ये साथियों पहरेदारों के रूप में कार्य करते थे, शिकार में मदद करते थे और बस्ती के आसपास कचरा प्रबंधन में भी सहायक रहे होंगे। पालतू जानवरों के साथ साथ जंगली जानवरों का भी महत्वपूर्ण स्थान। विभिन्न प्रकार के हिरण और एंटीलोप की हड्डियां बताती हैं कि शिकार ने पशु संसाधनों को पूरा किया। शिकार से मांस, छाल और अन्य सामग्री मिलती थी और यह घरेलू पशुओं से मिलने वाले संसाधनों की कमी को पूरा करता था। राखीगढ़ी के निवासियों ने जली और छोटे जानवरों का भी उपयोग किया। मछली पकड़ने जल स्रोतों से संग्रहण का संकेत देती हैं, जिससे उनकी भोजन में प्रोटीन और विविधता आई। पक्षियों के अवशेष स्थानीय पक्षियों के शिकार या जाल में फंसाने का संकेत देते हैं। सरीसृप और शंखों के अवशेष नदियों, दलदली क्षेत्रों और संभवतः शंख शिल्प या व्यापार के उपयोग में की ओर भी इशारा करते हैं।
1: ये थे पंकज गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर, डेक्कन कॉलेज, पुणे।
3: लगभग 4000 साल पहले सरस्वती नदी सूखने लग गई होगी। धीरे धीरे समस्त सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों में चहल पहल कम होती चली गई होगी। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों में इस सभ्यता के पतन के बारे में मतभेद हैं। डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट जलवायु परिवर्तन को मुख्य कारण मानते हैं।
4: 8000 से 5000 ईसा पूर्व, जिसको आजकल कॉमन एरा कहते हैं, जलवायु के वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया है कि जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश होती थी, बहुत ह्यूमिडिटी थी, बहुत बारिश होती थी 8000 से 3000 ईसा। उसके बाद ही हड़प्पा सभ्यता आती है, उस वक्त भी काफी बारिश थी। तो ये है कि सिंधु नदी अपने सारे सहायकों के साथ, पांच नदियां पंजाब की, सिंध और सरस्वती, ये बहुत जल का भंडार लेके पहाड़ों से जाके आगे जाके समुद्र में जाती थी। वह समय था जब आदमी ने बस्ती बना के रहने लगा था। उसका प्रमाण मेहरगढ़ नाम के स्थान पर है। तो धीरे धीरे उन्नति होते हुए हड़प्पा संस्कृति, ये जो अर्बन सिविलाइजेशन हम कहते हैं, नागर सभ्यता का उद्भव होता है और सारे जो प्राचीन महत्वपूर्ण स्थान है इन नदियों के किनारे ही बसे हैं, जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु के, हड़प्पा रावी के और गवेरी वाला सरस्वती के, कालीबंगा सरस्वती के, बड़ा वाली सरस्वती के और राखीगढ़ी और तमाम बहुत सारे प्राचीन स्थान सरस्वती के किनारे बसे थे, जिसमें एक प्रमुख हमने बताया अभी जो राखीगढ़ी था, विशाल पांच विशालतम नगरों में। फिर क्या होता है कि 3000 के बाद थोड़ा धीरे धीरे ये बारिश का कम होने लगती है। खैर इतनी कम नहीं होती, इन्होंने बहुत इंतजाम किया था सिंधु सभ्यता वालों ने तो, लेकिन उसके अंतिम चरणों में 2100 से 1900 के बीच काफी पानी कम हो गया और 1900 ऐसा समय आया जब बिल्कुल बारिश का होना एकदम बंद हो गया। कभी फ्लैश फ्लड्स आते रहे होंगे लेकिन

0: एकदम जिसे कि एरिडिटी, एक्सट्रीम एरिडिटी हो गई और उसी समय में इस ये सरस्वती सरस्वती और ये इसकी सहायक नदियां सूखने लगी और वही समय है जब इसके किनारे बसे हुए जब साफ सिंध और इनके सब नदियों के किनारे बसे हुए प्राचीन नगर जो है नगर और महानगर ये उजड़ने लगे, यानी कि आज नागर सभ्यता का विखंडन हो रहा। लोग शहरों से क्या करते भूतहा शहरों में रह के, इसलिए वो गांव की तरफ जत्थे बना के कोई पूरब गया कोई दक्षिण गया कोई उत्तर की तरफ आया, तो इस ढंग से नागर सभ्यता का विघटन हो गया। तो जलवायु का बहुत बड़ा हाथ है सिंधु सभ्यता के विघटन में। और एक दूसरा कारण जिसके बारे में आजकल विद्वान नहीं बोलते हैं, 2100 के आसपास मेसोपोटामिया में पॉलिटिकल उथल पथल हुई है। ये तो सभी जानते हैं कि मेसोपोटामिया और जिसे आजकल इराक कहते हैं, यहाँ भी एक नगर सभ्यता थी बहुत समृद्ध। वहाँ हड़प्पा वालों का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध उनसे था, जो वहाँ पॉलिटिकल उथल पथल भी जिसे 50 से 80 साल तक कहते हैं, वो समय है जबकि हमारे व्यापार से बहुत धक्का लगा। तो हमने जो उस व्यापार की वजह से मतलब ये माइनिंग से लेके वस्तु बनाना और लॉजिस्टिक परिवहन वगैरह वगैरह ये सब पे इतना धक्का लगा कि हड़प्पा की ये महानगर का विघटन होने लगा।
1: लेकिन इतिहास की खोज जितनी जरूरी है उसका संरक्षण उससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। हजारों वर्षों तक इतिहास को अपने गर्भ में सुरक्षित रखने वाले टीले, विशेषकर टीला नंबर 4 और टीला नंबर 6 आज आधुनिक अतिक्रमण और निर्माण का सामना कर रहे हैं। विकास और विरासत के संतुलन पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक युद्धवीर रावत के विचार।
2: ईएसआई जहां भी खुदाई करता है या किसी स्मारक का विकास करता है तो जरूर वहां के स्थानीय लोगों को एक तो ईएसआई की काम करने की पद्धति का पता चलता है और उस ढंग से वो भी कई कामों में निपुण हो जाते हैं और उसमें अपना योगदान करते हैं। जैसे हम लोग वहां पर गई सामग्री वो स्थानीय बनाते हैं, खास करके खुदाई के लिए जो औजार होते हैं उपकरण होते हैं, और स्थानीय लोगों को वहां पर ड्राइंग के लिए सर्वेइंग के लिए हम उपयोग में लाते हैं और उनको सिखाया भी जाता है, साथ साथ उनको जो है विविध जो उपकरण हैं जो इस चीज के जो है साधन है उनके बारे में उनको जानकारी होती है, इसलिए उनका योगदान भी इसमें बढ़ जाता है। और खुदाई और अतिक्रमण को रोकने का जहां तक सवाल है, ये धीरे धीरे हम लोगों ने कई ट्यूनों को प्रोटेक्शन किया है, उनकी हम जो है फेंसिंग कर रहे हैं और कई जो है टीलों पे हम शेड लगा करके एक जीवंत जो है संग्रहालय बना रहे हैं ताकि लोग जान सके कि क्या क्या वहां पर है, तो उसमें भी इन लोगों का योगदान रहेगा और वहां पर जो है भविष्य में कई लोगों को जो है गाइड की और इस चीज की जो है जरूरत पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों का उसमें बड़ा योगदान हो सकता है।
3: राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख नगर है, इस सभ्यता पर हरियाणा प्रदेश गौरवान्वित है। राखीगढ़ी में एक बड़ा संग्रहालय और हड़प्पन नॉलेज सेंटर बन रहा है। हरियाणा सरकार के पुरातात्विक विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र परमार के अनुसार,
4: राखीगढ़ी के टीलों पर राखी शाहपुर और रोकी खास दो गांव बसे हुए हैं, जहां टीले प्राचीन संस्कृति के वाहक हैं और वर्तमान गांव हैं आधुनिक जीवन शैली को दर्शाते हैं। तो हरियाणा सरकार इन टीलों और वर्तमान गांव के माध्यम से हरियाणा की 10,000 साल की जो गौरवशाली यात्रा है उसको दिखाने का प्रयास कर रही है। प्राचीन समय में हरियाणा के लोगों की जीवन शैली ऐसी थी और वर्तमान समय में ऐसी थी, और इस यात्रा में क्या क्या कंटिन्यूटी है और क्या क्या बदलाव हुए हैं इसको भी हम विश्व के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। राखीगढ़ी में 200 करोड़ की ज्यादा के लागत से एक विश्व स्तरीय म्यूजियम हरियाणा सरकार के माध्यम से बन रहा है और उसमें भी अतीत से वर्तमान की यात्रा है, उस पर भी विशेष फोकस रखा गया है।
1: हरियाणा पुरातत्व विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र परमार भविष्य में राखीगढ़ी को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के प्रति आशान्वित हैं।
3: स्थानीय युवाओं को हेरिटेज गाइड के रूप में प्रशिक्षित करना और होम स्टे व सांस्कृतिक पर्यटन से जोड़ना ही इस स्थल को जीवंत बनाए रख सकता है। राखीगढ़ी केवल एक खुदाई स्थल नहीं, एक जीवंत गांव भी है, जहां अतीत और वर्तमान एक साथ

0: सांस लेते हैं, जहां किसान अपने खेत जोतते हुए मिट्टी में दबे इतिहास को स्पर्श करते हैं। इस अनूठी सह अस्तित्व की भावना पर राखीगढ़ी के सरपंच दिनेश का क्या कहना है, आइए सुनते हैं।
1: हमारे गांव के आर्टिस्ट, क्राफ्टमैन, महिलाएं सबको एक रोजगार के रूप में विकसित गांव धीरे धीरे हो रहा है। हमारे गांव को लिविंग हेरिटेज लैंडस्केप के रूप में विकसित करने के लिए हम पुरजोर प्रयास करते रहते हैं, और एक एक्सपोजर मिलता है कि देश विदेश से घूमे हुए लोग हमारे यहाँ आते हैं, उनके आइडियाज हम हमारे साथ शेयर करते हैं और उनको हम एग्जीक्यूट भी करते हैं उन आइडिया को लेके। तो वैसे ही प्रयास में हमने मतलब एक पूरी बड़ी गाइड टीम को विकसित किया है राखीगढ़ी में, ट्रेडिशनल फूड बनाने वाली महिलाओं को विकसित किया है, और हमारे जो क्राफ्टमैन है उनका तो कहना ही अलग है। हमारे गांव की कई महिलाओं की दरिया बाहर के कंट्री में बहुत डिमांडिंग है। हमारे गांव की लेडीज जो रोटी बनाने के लिए बोहिया बनाते हैं सरकंडे और पन्नी के, वो बहुत फेमस है। महिलाएं हमारी बाहर के बड़े स्कूल्स में क्राफ्ट वर्कशॉप के लिए जाने लगी है। आगे के प्लान के तौर पे हम हमारे गांव के 200 साल पुरानी चौपाल को एक लिविंग हेरिटेज लैंडस्केप के रूप में देख रहे हैं, कुछ हवेलियों को बाहर के लोगों के साथ मिलकर विकसित कर रहे हैं।
2: राखीगढ़ी कभी विशाल महानगर रहा होगा, राखीगढ़ी का पूरा रहस्य अभी धरती के गर्भ में ही छिपा है। अभी तो उन रहस्यों से भी पर्दा उठना बाकी है जो लिपि को पढ़ने का मार्ग दिखाएंगे। युवा पुरातत्वविद डॉक्टर दिशा आलूवालिया ने समय समय पर हुए उत्खनन कार्यों में भाग लिया है। खुदाई के दौरान उन्होंने करीबन 400 मिट्टी की ईंटें निकाली थी। दिशा आलूवालिया का मानना है कि अभी बहुत काम होना बाकी है।
3: अभी बहुत बड़ा हिस्सा है राखीगढ़ी का जो कि हिंटरलैंड एरिया भी है। हमें नहीं पता है कि सिटी का छोर कहाँ खत्म हो रहा था और उसका सैटेलाइट एरिया कहाँ शुरू हो रहा था। हमें अभी तक जो जानकारी है वो स्टैटिग्राफी और जो कितने सालों तक वहाँ ऑक्यूपेशन रहा है हमें वो पता है, बट कितना और बड़ा सेटलमेंट हो सकता है हमें उसकी जानकारी पूरी तरीके से नहीं है। धोलावीरा के जैसे एक हाइड्रोलिक सिस्टम होना बहुत जरूरी है, और राखीगढ़ी में जो बड़े बड़े ड्रेन्स मिलते हैं, हमें वेल्स मिलते हैं, और जो लास्ट एविडेंस टैंक का मिला था वो ये बताता है कि एक बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हाइड्रोलिक सिस्टम है, पर अनफॉर्चुनेटली हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट ये मान सकते हैं कि ऐसे बहुत छोटे छोटे जो लोग को लगे कि बहुत छोटी जानकारी है, बट रिसर्च के लिए बहुत बड़ी जानकारी हो सकती है। राखीगढ़ी में लोग कैसे रहते थे, उनका सिस्टम कैसा था, ड्रेनेज सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, उनका डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम कैसा था, उनका सिटी का लिमिट कितना बड़ा था, फोर्टिफिकेशन था नहीं था, बैस्टियंस थे, डबल फोर्टिफिकेशन था, सिंगल फोर्टिफिकेशन था, ये सब जानकारी अभी जाननी जरूरी है। बैरियल्स अभी भी एक्सकवेट हो रहे हैं, बट उसके अलावा भी हमें ये आगे इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है कि जो जहां बैरियल्स हो रहे हैं, माउंट सेवन जिसको बोला जाता है, जहां मचो हरपन बैरियल्स मिलते हैं, वहां पे जो अर्ली एविडेंस मिले हैं अर्ली हरप्पन के, ये दर्शाता है कि जो अर्ली हरप्पन लेवल जो है वो काफी बड़ा रहा है। तो अर्लीस्ट एविडेंस जो साइट पे मिलता है उसका स्केल जानना, वहां से लेके मचौर तक कैसे सेटलमेंट चेंज हुआ है, कैसे सिटी डेवलप हुई है, ये सब बातें जो है, ये कहानी जो है अभी भी बाकी है।
2: उनका ये भी मानना है कि जैसे जैसे तकनीक उन्नत होगी इस पुरातात्विक स्थल को और अच्छे से समझा व जाना जाएगा।
3: GPR मैग्नेटोमेट्री ऑलरेडी प्रोफेसर वसंत शिंदे ने किया है, बट उसके अलावा रिमोट सेंसिंग है, टेस्ट पिट्स ले सकते हैं, फील्ड वॉकिंग है, कई ऐसी टेक्निक्स है आगे फ्यूचर में आएंगी जो हमें ये एविडेंस बहुत क्लियरली बताएंगी। बट एज ऑफ नाउ अभी हम रिमोट सेंसिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर हम उस पे काफी मेहनत करें, और सैटेलाइट इमेजरी और स्पेशल एविडेंस के हिसाब से हम जान सकते हैं कि इंडिकेशन लगा सकते हैं साइट के बारे में।
0: राखीगढ़ी की मिट्टी में दबी हर पक्की ईंट एक गाथा सुनाती है, हर मन का एक हुनरमंद हाथ की कहानी कहता है, और हर अवशेष उस महान मानव जीवन का साक्ष्य है।
2: सवाल बस इतना है, क्या हम इतिहास की इस पुकार को सुनने के लिए तैयार हैं?
4: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना रूपक, राखीगढ़ी मिट्टी के

नीचे सोया महानगर। आलेख डॉक्टर अप्पू सहारण का था, वाचन स्वर उषा मलिक व पंकज भारद्वाज का था। कार्यक्रम का संपादन दिलीप अहिरवार ने किया, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी रोहतक के सौजन्य से प्राप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमेरिकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इस हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। चीन के सेंजेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हेजी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इस

0: Floods have affected normal life in several parts of Bihar, with major rivers including the Ganga, Gandak and Kosi flowing above the danger mark. In view of the rising water level of the Ganga, authorities are maintaining heightened vigilance in downstream areas. The river has crossed the highest flood level at several ghats in Patna. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinched their maiden title at the China Masters in Shenzhen today. The Indian duo defeated China's He Jiting and Rei Xiang Yu in the summit clash to secure country's first ever title at the tournament. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar. Akashwadi se Vishw Darpan ke saath main Ashutosh Mishra. मुख्य समाचार। भारत ने विश्व मानचित्र पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया, कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित संप्रभु क्षेत्रों को सटीक रूप से दर्शाया जाना चाहिए। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच ईरान अमेरिका तनाव बढ़ा। बलूचिस्तान की जहरी तहसील में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा सैन्य अभियान, गिरफ्तारियों और हवाई हमलों की खबरों के बीच कर्फ्यू जारी। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट से हवाई यात्रा बाधित, 1 लाख से अधिक यात्री फंसे। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़ी प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट और अडिग है। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 सितंबर को समान क्षेत्रफल वाले मानचित्रों को बढ़ावा देने से जुड़ा प्रस्ताव पारित किया। इसका उद्देश्य दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों, खासकर अफ्रीका को मानचित्रों पर उनके वास्तविक क्षेत्रफल के अनुपात में दिखाना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव किसी खास मानचित्र, प्रक्षेपण या किसी देश की सीमा के चित्रण का समर्थन नहीं करता। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उनकी एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। IRGC ने दावा किया कि इन पोतों ने ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी में हिस्सा लिया था। उसने चेतावनी दी कि अगर अमरीका की आक्रामक कार्रवाई जारी रही तो ईरान की सशस्त्र सेनाएं कड़ा जवाब देंगी। यह तनाव IRGC की नौसेना द्वारा रात में किए गए हमलों के बाद और बढ़ गया। IRGC ने कहा कि उसने हॉर्मूज जलडमरू मध्य में 3 तेल टैंकरों और अन्य स्थानों पर अमेरिका से जुड़े 3 जहाजों को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। हॉर्मूज जलडमरू मध्य के आसपास अमेरिका ईरान संघर्ष में इस सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य और उसके आसपास जहाजों पर हमले किए हैं। कल के ताजा घटनाक्रम में अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि उसने ईरान के 3 तेल टैंकरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया कि उसकी नौसेना ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य के संरक्षित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही रिमोट से संचालित अमरीका की एक नाव को निशाना बनाया है। बलूचिस्तान के खुजदार जिले की जहरी तहसील में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के सैन्य अभियान के कारण प्रतिबंधों को बढ़ा दिया गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि अभियान के दौरान लोगों को हिरासत में लिया गया और कुछ लोग लापता हुए तथा हवाई हमला भी किया। द बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार कथित अभियान के दौरान सुन्नी इलाके से करीब 25 लोगों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया। बाद में उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। जहरी के अन्य इलाकों में भी इसी तरीके के अभियान चलाए जाने की खबर है। सूत्रों के अनुसार सुन्नी इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कथित हमले में एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए हैं। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण

0: 8 हवाई अड्डों पर परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इससे 1.5 लाख से अधिक यात्री फंस गए हैं। परिवहन मंत्री डूडी पूर्वा गांधी ने बताया कि अब तक 712 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। जकार्ता के सेकार्नो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी से निकली राख के हवाई क्षेत्र में पाए जाने के बाद सबसे पहले परिचालन निलंबित किया। ज्वालामुखी की राख जावा के ऊपर 20,000 फीट और सुमात्रा की ओर 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच गई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। मिस्र की एक अदालत ने टीवी एंकर सारा खलीफा समेत 12 लोगों को ड्रग्स तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई है। सभी दोषियों को फांसी दिए जाने का आदेश दिया गया है। अदालत ने माना कि आरोपी एक आपराधिक गिरोह चला रहे थे जो मादक पदार्थ के निर्माण और बिक्री के लिए कच्चा माल आयात करता था। एक रिपोर्ट।
1: आरोपियों के पास अवैध हथियार होने की बात भी सामने आई है। सारा खलीफा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि अधिकारियों ने उन्हें नशीले पदार्थों के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए मजबूर किया था और उन्होंने पहली बार तभी उन पदार्थों को देखा। मिस्र के कानून के मुताबिक मौत की सजा को अंतिम रूप देने से पहले ग्रैंड मुफ्ती से धार्मिक मंजूरी लेना अनिवार्य है। यह मंजूरी मिलने के बाद सजा को अंतिम रूप दिया गया है। हालांकि दोषियों के पास अभी भी फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। जांच दौरान अभियोजन पक्ष ने बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाए। करीब 20 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसके अलावा 750 किलोग्राम से ज्यादा मादक पदार्थ और उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे रसायन भी जब्त किए गए। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल पहले भी मिस्र में बड़ी संख्या में मौत की सजाओं को लेकर चिंता जताता रहा है। संगठन का कहना है कि मिस्र में ड्रग्स तस्करी जैसे अपराधों में भी अक्सर मौत की सजा दी जाती है, जबकि इनमें जानबूझकर हत्या शामिल नहीं होती। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: ओपेक प्लस के 7 प्रमुख देशों ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान के प्रतिनिधियों ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैश्विक बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की।
2: ये फैसला ऐसे समय में हुआ है जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी हुई है। ओपेक प्लस ने सितंबर में कच्चे तेल के उत्पादन में प्रतिदिन 1,88,000 बैरल की वृद्धि कर वर्ष 2023 की स्वैच्छिक कटौती को समाप्त कर दिया है। ये बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरुमदी के आसपास व्यवधानों सहित तेल निर्यात में जारी रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। संयुक्त अरब अमीरात इस वर्ष मई में राष्ट्रीय हितों का हवाला देते हुए ओपेक प्लस से अलग हो गया था। उसका कहना था कि वह बाजार की तत्काल जरूरतों को पूरा करने में अधिक प्रभावी योगदान देना चाहता है। ओपेक प्लस की अगली बैठक अक्टूबर में होने की उम्मीद है, जिसमें बाजार की स्थिति और तेल उत्पादन स्तर की समीक्षा की जाएगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस महीने की 12 और 13 तारीख को भारत मंडपम में आयोजित होगा। सम्मेलन की सुरक्षा तैयारियों के तहत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। चीन के चियांगशी प्रांत में मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग अब भी लापता हैं। तूफान सॉडल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण यह आपदा आई। बचाव कर्मियों ने आज एक ढहे हुए घर से लापता व्यक्ति का एक शव बरामद किया। 2 अन्य लोगों को बचाया गया है। उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। चीन के शेंजन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इस वर्ष यह उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर 4th खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उप विजेता रही थी। भारत अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने विश्व मानचित्र पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित संप्रभु क्षेत्रों को सटीक रूप से दर्शाया जाना चाहिए। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य

0: Please stand by now for the news in Hindi.
1: नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
2: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता पहचानने की जरूरत है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि उनके एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 8 हवाई अड्डों पर परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इससे 1.5 लाख से अधिक यात्री फंस गए हैं। परिवहन मंत्री डूडी पूर्वा गांधी ने बताया कि अब तक 712 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। जकार्ता के सोकार्नो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आज सुबह अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी से निकली राख के हवाई क्षेत्र में पाए जाने के बाद सबसे पहले परिचालन निलंबित किया। चीन के शेंझेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी के चीन के हे जी टिंग और रेयान जियांग यू को हराया। इस वर्ष यह उनका दूसरा सुपर 750 और कुल

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today being Sunday, we will be taking calls from you, our listeners, on your mutual fund related queries. But do remember, listeners, that we do not address fund specific queries. You can call us on these numbers 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: Karjor Abhinandan, Namaskar, Karubari Khabron ke saath Market Mantra hazir hai. Shrotaon, aaj Ravivar hai aur har Ravivar ki tarah aaj bhi hum mutual fund se jude aapke tamam sawalon ke jawab dene ki koshish karenge. Sawal poochne ke liye aap in numbers par hame phone kar sakte hain. Ye numbers hain 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। इससे पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन।
2: जी धन्यवाद।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, आपके सवाल हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
0: थैंक यू प्राची। Prime Minister Narendra Modi calls upon young Indians to build global consulting, accounting, financial and legal firms that can lead the world. Foreign portfolio investors were net sellers of Indian equities in the first week of September, and in bullion market, gold and silver prices declined last week.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं से दुनिया का नेतृत्व करने वाली वैश्विक स्तर की कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, वित्तीय और कानूनी कंपनियां बनाने का आह्वान किया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक सितंबर के पहले सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध बिकवाल रहे और सराफा बाजार में इस सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।
0: And before we begin the program, an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Over to you, Prachi.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए समाधान विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्व भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। और इसी बीच अनुभव दिल्ली से हमारे साथ भुवन जुड़ रहे हैं। भुवन जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार जी, लखा बोल रहा हूँ मैं दिल्ली से। मार्केट मंत्र की टीम को और एक्सपर्ट्स को मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: मेरा प्रश्न ये है कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनको इनकम टैक्स लॉज के हिसाब से कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का परमिशन होता है, तो किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि उनका चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन खराब नहीं जाए?
2: जी, इस चीज की जानकारी मेरे को अभी नहीं होगी। आप अगले सप्ताह कॉल करिएगा, इसकी जानकारी आपको मैं तब दे पाऊंगा।
0: सो लाइक कार एक्सपर्ट इज सेइंग,

0: asset class first and then the exact fund category.
1: यानी कि हम जब निवेश करें तो उससे पहले ये सोचें समझें कि हमें किस वक्त तक चाहिए हमारा पैसा और कितने समय के लिए हम निवेश कर रहे हैं और क्या और कितना रिस्क हम बियर कर सकते हैं इस दौरान में.
0: श्रोताओं,
1: अगर आपके भी मन में कोई सवाल हो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो बेधड़क पूछिए. इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं. ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. आपके सवालों के जवाब लेकर आकार रस्तोगी हमारे साथ हमारे समक्ष बैठे हैं. आकार, अगर कोई जो फंड है वो अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है कुछ समय से तो हाई एक्सपेंस रेशियो के जस्टिफाई होता है?
0: देखिए, जो आपके रिटर्न्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में वो आपके एक्सपेंस रेशियोज को कंसिडर करने के बाद ही आते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि जो हमारा एक्सपेंस रेशियो होता है वो आपका एनएवी में एडजस्ट होता है एंड रिटर्न्स आपका यूजली वो एनएवी के बेसिस पे ही होता है. एक्सपेंस रेशियोज के लिए रेगुलेटर ने सेबी ने कुछ मैक्सिमम सीलिंग्स लगा रखी है एंड एज फार एज अगर वो फंड आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहा है प्लस बाकी पोर्टफोलियो ठीक है एंड ऑल थिंग्स गोस तो देयर इज नो हार्म इन इट. बट साथ ही में मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि कुछ समय से बहुत दफ़े ऐसा होता है कि जो रीसेंट शॉर्ट टर्म रिटर्न्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं. कोई सा फंड ऐसा होता है अगर आप देखेंगे कि अच्छा अभी पिछले 6 महीने में ये एकदम नंबर 1 पे इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए या पिछले 1 साल में इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए. और यहीं पे बहुत ज़्यादा निवेशक गलती करते हैं. हम लोग क्या करते हैं, एकदम हम लोग आसपास के पिछले 6 महीने के पिछले 3 महीने के 1 साल के रिटर्न्स देखते हैं और जो टॉप पे होता है हम लोग सीधा उसमें निवेश कर देते हैं. बट वो चीज सही नहीं है.
1: लोभ आ जाता है मन में तुरंत.
0: बिल्कुल बिल्कुल. और उसके अलावा देखिए ये पास रिटर्न्स पे बेसिस पे होता है. एक आपको एक खाली इंडिकेशन दे रहा है कि वो फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है. यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप उस पर्टिकुलर फंड की परफॉर्मेंस एक लंबे समय में देखें रोलिंग रिटर्न्स पे या फिर एक लॉन्ग होराइजन में 3 साल 4 साल 5 साल और मार्केट के डिफरेंट फेजेस में, कि जैसे जब मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तो उस फंड ने अपने कैटेगरी के बाकी फंड्स के तरह कैसे काम किया है. केवल अभी ठीक पिछले कुछ 1-2 महीने की परफॉर्मेंस या 6-7 महीने की परफॉर्मेंस एक अकेला कारण नहीं होना चाहिए कि आप उस फंड में निवेश करें.
2: आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग अकार, यू नो, होल्ड स्पेशली ट्रू नाउ इट इज बिकॉज वी बीन सीइंग मार्केट्स हैव बीन वोलेटाइल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ड्यू टू वेरियस रीजंस. सो लाइक यू आर सेइंग दैट व्हेन यू आर असेसिंग अ फंड, व्हेन यू आर यू नो असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ फंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू नॉट गो बाय अ शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस. वी हैव टू लुक एंड लाइक आई सेड द मार्केट इज वोलेटाइल राइट नाउ, सो इट्स बेटर इफ अ फंड इज डूइंग वेल और हैज डन वेल, यू नो, इन दिस पीरियड. इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट दैट वी गो बैक अ फ्यू इयर्स एंड सी how it was performing, you know, or if a fund, you know, does well, or say let's a few months down the line when the market are stable, it'll be very pertinent to see how that fund was performing right now when the markets were volatile.
0: Right.
1: भोपाल से इस बीच हमारे साथ शंकर जुड़ रहे हैं. शंकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: आकार जी को, मार्केट मंत्र टीम को भी नमस्कार. मेरा सवाल, माय क्वेश्चन इज अबाउट लार्ज कैप. लार्ज कैप फंड हैज गॉन डाउन और नॉट परफॉर्म वेल बेसिकली ड्यू टू एफआईआई पुलिंग आउट लॉट ऑफ मनी. सो इफ एनीवन हैज अ सरप्लस फंड बिसाइड्स हिज रनिंग एसआईपीज, व्हाट वुड बी द राइट स्ट्रेटजी? शुड इट बी इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप बिकॉज दे आर डाउन, और वी गो फॉर कॉन्ट्रा फंड? व्हिच स्ट्रेटजी वुड वर्क बेटर इन फॉर पीपल हु हैव सम एक्स्ट्रा फंड अवेलेबल नाउ फॉर इन्वेस्टमेंट? Thank you.
0: Shankar ji, specifically, you know, first of all, I would like to say that it somehow seemed like that you're trying to, you know, capture a market opportunity or trying to time the market because, you know, as you were saying that, you know, they are down and I have a bit of surplus. So here I would like to caution you because, you know, it's never a good idea to time the market because you really don't know in which direction the market would move. So firstly, as we were talking, I mean, first of all, don't, you know, invest with the intention of making quick money or, you know, getting good returns over the short term or, you know, being opportunistic. So the whole idea of investing in mutual funds is that, you know, you diversify your risk. And also here comes the concept of SIP, wherein, you know, you stagger your investment over a period of time. You just said that you already have an ongoing SIP. And if you have a surplus, what I would rather recommend is that, you know, even with that surplus amount, you start another SIP to, you know, spread it over a period of time, maybe 6-7 months or a year

0: depending on how large the sum is, what value does it hold in your portfolio. And if you fear to consume that amount, it's better you put that amount in a liquid fund and set up an STP from there. And whether to invest in large cap specifically or not, I would say it again depends on your whole portfolio and the time horizon and the risk appetite. You also mentioned about the contra fund. So definitely, when you are investing in equities, value funds and contra funds are a good add-on to your diversified portfolio, but they may not be necessarily completely invested into just large cap stocks. They might carry a slightly more risk. So it would be better to, look at your overall portfolio, and the value contra funds should be like 20-30% of your diversified portfolio.
1: We have the next caller with us online. Pradeep is calling us from Delhi. Pradeep, I will request you to just be a little more patient because I want to ask Akar here. We're talking of contra funds. For those of our listeners who do not know, what exactly is a contra fund?
0: So contra funds usually invest in the strategies or the stocks of the companies which are currently not in favor or
1: against the tide.
0: Right.
1: Okay, now let's take the call. Pradeep has been very patient. Pradeep, welcome to Market Mantra and ask your question, please.
2: Namaskar, Market Mantra team. Jeez. Pradeep bol raha hu Delhi se.
1: Ji, sawal puche.
2: Sir, mera na ek mid cap mein chal raha hai SIP. Beech beech mein main usme lump sum bhi karta rehta hu. To sir, usme na around mein 5 lakh ke round mein abhi jama kara chuka hu usme paisa. लेकिन वो मिड कैप ऐसा है कि उसका पोर्टफोलियो बड़ा कंसंट्रेटेड है काफी
0: जी.
2: तो मैं सोच रहा था कि मेरे को अभी उसमें जैसे 5 लाख रुपए मेरा जमा हो चुका, क्या मेरे को कोई दूसरा मिड कैप ले लेना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन मेरा सर ये है कि मैं बीच बीच में ना लमसम करता हूँ, तो जैसे मेरा एक चल रहा है फार्मा में कर देता हूँ, मैं डिफेंस में चलता हूँ, SIP मेरी चल रही है, तो बीच बीच में जैसे करेक्शन आती है तो मैं वहाँ लमसम कर देता हूँ, तो क्या मेरी स्ट्रेटेजी ठीक है सर? प्लीज आप बताइए.
0: देखिए, पहले जैसे आपने बताया कि आप एक मिड कैप फंड में निवेश कर रहे हैं, तो आपकी बातों से मैं जितना समझ पा रहा था, आप एक ही मिड कैप फंड में आपने अपना पूरा पोर्टफोलियो लगा रखा है. तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि देखिए, डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है. सारा का सारा आपका जो पोर्टफोलियो केवल और केवल एक फंड पर निर्भर नहीं होना चाहिए. तो अगर ऐसा है कि केवल वो एक फंड में, तो आपको एक दूसरा पोर्टफोलियो, एक दूसरा मिड कैप फंड आप ऐड कर सकते हैं.
1: वो ये भी जानना, यही जानना चाह रहे हैं कि वो क्या करें ऐसा.
0: हाँ जी, तो उस केस में आप एक और मिड कैप फंड ऐड करिए, बट केवल खाली एक यही कारण नहीं होना चाहिए कि उसमें अभी इतना अमाउंट हो गया कि 5 लाख का उसमें पूंजी इकट्ठी हो गई, इसलिए मैं दूसरे एक और फंड में लगा देता हूँ, अब इसमें हो गया. अगर वो फंड बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और जो आपका एक पूरा पोर्टफोलियो है उसमें ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड बेट बनी हुई है, और फंड्स में निवेश है, आपने ठीक ठाक करा हुआ है, इसके अलावा आपने एक डाइवर्सिफाइड फंड में भी करा हुआ है, तो उस सिनेरियो में ऐसी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप किसी एक और फंड को ऐड करें, क्योंकि वहाँ पे वरना फिर आप एक कलेक्टर ऑफ फंड्स बन जाएंगे और बहुत सारे फंड्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड होते रहेंगे.
3: जी आकार, कई बार ऐसा होता है, और अभी हमारे जो श्रोता हमारे साथ जुड़े उन्होंने भी वही बात बताई जो मैं अभी कहने जा रही हूँ, कि हम SIP कर रहे होते हैं और साथ के साथ हमारे पास लमसम भी अमाउंट होता है. आपने कहा हम शिवशंकर जुड़े हुए थे भोपाल से, तो आपने कहा कि जो लमसम अमाउंट है, अगर वो अमाउंट अलाउ करता है तो आप उसको SIP के तौर पर इन्वेस्ट करें, ना कि आप लमसम लगाएं पैसा. इसके पीछे क्या कारण है, क्या इसकी महत्ता है, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं?
0: देखिए, जब भी आप एक सिस्टमैटिक मैनर में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप बेसिकली जो आपकी परचेज कॉस्ट है आप उसको एवरेज आउट कर देते हैं. जैसे कि इसको एक अगर मैं एक उदाहरण में समझाऊं, मान लीजिए आज किसी के पास एक लाख रुपए लमसम है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, और उसने पूरा का पूरा आज मार्केट में डाल दिया, और एकदम ही डालने के बाद एक हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद मार्केट नीचे गिर गया, तो जो उसका पूरा का पूरा पैसा है वो आज के एक मार्केट पॉइंट पे घुस गया है, और वो एक रिस्क बन गया, एक एंट्री पॉइंट का रिस्क बन गया. वहीं पे अगर उन्होंने ये पॉइंट, ये जो अमाउंट है, कुछ 3 महीने या 6 महीने में स्प्रेड करा होता, तो वो सारा का सारा पैसा आज इन्वेस्ट नहीं हुआ,
3: तुरंत लाल में नहीं जाता.
0: बिल्कुल, तुरंत लाल में नहीं जाता, और वो आगे आने वाले समय में जब मार्केट नीचे गिरा होता वो ज्यादा खरीद पाते, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि मार्केट सस्ता हो गया, हमने ज्यादा चीजें खरीद ली. बिल्कुल, तो एक आपके जो परचेज कॉस्ट है उसको एवरेज आउट कर देता है, और आपका जो रिस्क है वो उससे कंपैरेटिवली मिनिमाइज हो जाता है मार्केट में गलत

0: एंट्री पॉइंट में क्वेश्चन का।
1: बिल्कुल, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फरीदाबाद से, इनका नाम है सुभाष। सुभाष जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार
0: सुभाष जी।
3: सर मैं ये जानना चाह रहा था कि निफ्टी इंडेक्स फंड को अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? एक्सपेंस रेशियो होनी चाहिए मेन या कुछ और क्राइटेरिया होना चाहिए?
0: नहीं, मेन उसमें एक्सपेंस रेशियो रहेगा। देखिए, जितने भी सारे जो इंडेक्स फंड्स होते हैं, ये फंड्स ऐसे नहीं होते कि इनमें एक फंड मैनेजर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये फंड्स केवल आपका जो मार्केट है, जैसे निफ्टी आपने खुद बोला, उसको ट्रैक करेंगे। जिस रेशियो में अलग अलग स्टॉक्स होते हैं निफ्टी के इंडेक्स में, ये फंड्स आपका सारा पैसा उसी प्रपोर्शन में उन्हीं स्टॉक्स में, उतने ही नंबर ऑफ स्टॉक्स में निवेश करते हैं। तो आमतौर पर जितने भी निफ्टी के या कोई से भी इंडेक्स फंड्स है जो एक सेम इंडेक्स को ट्रैक कर रहे, उनके रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता। उनके रिटर्न्स में जो अंतर के कारण होते हैं वो दो होते हैं केवल। एक होता है आपका एक्सपेंस रेशियो और दूसरा होता है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर को अगर मैं एकदम आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो ये हो गया कि वो जो उस इंडेक्स को ट्रैक करने का काम कर रहा है, उसको डुप्लीकेट करने का, रिप्लीकेट करने का, वो कितने अच्छे से कर पा रहा है। अगर ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहा होगा तो फिर ज़्यादा डिफरेंस होएगा, अदरवाइज डिफरेंस कम होएगा। तो आप केवल एक्सपेंस रेशियो पे सॉर्ट करिए शुरुआती तौर पे, और जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना अच्छा, और आप उस इंडेक्स फंड का चुनाव कर सकते हैं।
2: वी डू हैव अ नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली, सुजन नेगी इज कॉलिंग अस फ्रॉम देयर, बट बिफोर वी टेक योर कॉल सुजन, प्राची, व्हाई डोंट यू गिव अस हाउ द गोल्ड सिल्वर प्राइसेस वर ड्यूरिंग द वीक?
1: बिल्कुल श्रोताओं, अन्य खबरों में सोने और चांदी के भाव समझ लेते हैं। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई। मजबूत अमरीकी डॉलर, अमरीकी ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी और निवेशकों की धारणा इस उम्मीद से भी प्रभावित हुई कि अमरीकी फेडरल रिजर्व सितंबर की बैठक में भी आक्रामक मौद्रिक नीति का रुख बनाए रखेगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर अनुबंध वाले सोने का वायदा भाव सप्ताह के दौरान 2.2% गिरकर 1,52,767 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी का वायदा भाव 2% की गिरावट के साथ 2,31,922 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर अनुबंध वाला सोने का वायदा भाव सप्ताह के दौरान 1.2% की गिरावट के साथ $4,441.90 प्रति ट्राई आउंस पर बंद हुआ। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी का वायदा भाव 1.4% फिसल कर $66.04 प्रति ट्राई आउंस पर आ गया। और सुजान नेगी जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: हाँ जी, मार्केट मंत्रा टीम को नमस्ते,
1: बहुत अभिनंदन।
4: हाँ जी मैम, मेरे दो सवाल हैं। पहला तो ये है कि मैंने SBI कॉन्ट्रा फंड में मनी, मतलब मैंने लगा रखी है उसमें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है मेरे पैसे, तो वो माइनस में दिखा रहा है, तो क्या मेरे को स्विच ओवर कर देना चाहिए किसी दूसरे फंड में? और करना चाहिए तो कौन से फंड मुझे को, अब कौन सा फंड लेना चाहिए? और स्विच करने का मतलब चार्ज लगता है क्या? तो यही कुछ क्वेश्चन है मैम मेरे।
0: देखिए सुजन जी, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी पिछले कुछ समय में मार्केट बहुत अच्छा नहीं रहा है, और जो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स है वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तो केवल उस शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के वजह से आप एकदम से ऐसा डिसीजन ना लीजिए कि आपको उस फंड से जाना चाहिए। अभी थोड़ा सा उसमें रहकर कुछ उस फंड को थोड़ा और समय दीजिए और देखिए उसका जो रिटर्न्स है। यहीं पे दूसरी चीज़ आती है, जो एक आपने काफ़ी अहम क्वेश्चन पूछा कि अगर आप स्विच करते हैं तो क्या उस स्विच करने के चार्जेस लगेंगे। देखिए, जब भी आप किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरे में जाते हैं या निकालते हैं तो केवल दो तरीके के चार्जेस होते हैं, या जो एक कॉस्ट होती है, उनको चार्जेस नहीं बोलना चाहिए, जो आपको इम्पैक्ट करेगी। पहला है कि उस पर जो भी टैक्स है, टैक्स हमारा म्यूचुअल फंड्स में कैपिटल गेन्स के तौर पे लगता है, और जो इक्विटी फंड्स है यहाँ पे अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा होता है तो आपका जो टैक्स है वो 12.5% रहता है। लेकिन यहाँ पे एक न्यूएंस है कि हर फाइनेंशियल ईयर में इक्विटीज़ के और इक्विटी फंड्स के जो भी आपकी गेन्स होते हैं, जो कि 1 साल से ज़्यादा होल्डिंग पीरियड के होते हैं, वो पहले 1.25 लाख पर टैक्स की छूट होती है, उसके बाद 12.5% लगता है। और अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है तो आपका जो टैक्स उस गेन्स पे वो 20% लगता है। दूसरा एक कॉस्ट रहता है एग्जिट लोड का। अगर आप एक फंड के एक डिफाइंड पीरियड से बहुत जल्दी निकालते हैं तो वहाँ पे को आपके NAV का कुछ परसेंटेज काट लेते हैं।
1: दिल्ली से हमारे साथ प्रकाश जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।

0: मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर, रस्तोगी जी को भी नमस्कार।
2: नमस्कार
0: सर, मेरे को 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं 5 साल के लिए, तो 2 अच्छे मल्टी कैप फंड बता सकते हैं?
1: फंड स्पेसिफिक तो हम यहाँ पर जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका कोई भी अन्य सवाल हो तो ज़रूर अगले सप्ताह आप संडे को हमें कॉल करें, हमें संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। द 7 कोर ओपेक प्लस कंट्रीज सऊदी अरेबिया, रशिया, इराक, कुवैत, Kazakhstan, Algeria and Oman met virtually today to review global market conditions and outlook. They decided to keep the grouping's oil output policy unchanged for October amid global uncertainty. The decision comes after OPEC Plus increased production by around 188,000 barrels per day for

0: production by around 188,000 barrels per day for September, completing the rollback of a voluntary production cut of around 1.65 million barrels per day that had been introduced in 2023. The meeting comes against the backdrop of continuing disruptions to the oil exports, including those linked to the conflict involving Iran and disruption around the Strait of Hormuz. These disruptions have limited the impact of OPEC Plus production decisions on oil, global oil supplies and prices. And let's take the next call. Kunj Bihari is calling us from Mathura. Welcome to the program. Please ask your question.
1: धन्यवाद
0: जी.
1: मैं पूछना चाहूंगा कि आप बताते हैं कि आपका जो पैसा है एक मैनेजर के द्वारा लगाया जाता है, वो मैनेजर किसके द्वारा बिठाए जाते हैं, उनको क्या बेनिफिट है जो हमारा पैसा कंपनियों में इधर लगाते हैं, क्या वो हमारे फायदे के लिए ही ठीक है, क्या कभी वो हमारे को लॉस भी करा सकते हैं?
2: नहीं, से जो फंड मैनेजर्स होते हैं ये उस फंड म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा नौकरी पे रखे जाते हैं, उनको ये काम असाइन किया जाता है और वो लोग एकदम प्रोफेशनल्स होते हैं. सो फंड मैनेजर्स का रोल ही ये होता है कि एक जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है, आप और मेरे जैसे लोग, अगर हम लोग शेयर मार्केट में ये चीज़ नहीं चेक कर सकते कि कब कौन से स्टॉक में लगाना है, किस कंपनी में लगाना है, तो जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो इस चीज़ की पूरी ट्रेनिंग पढ़ाई करके प्रोफेशनल तरीके से और एक काम करते हैं. सो उनका फ़ायदा बेसिकली ये है कि उनका जॉब है, दे आर बीइंग पेड फॉर दिस.
3: अन्य खबरों में, घरेलू निवेशकों का ध्यान अगले सप्ताह पश्चिम एशिया में होने वाले घटनाक्रम, कमोडिटी कीमतों, बॉन्ड यील्ड में उतार चढ़ाव और मुद्रा बाजार में होने वाले बदलावों पर रहेगा. प्राथमिक बाजार में मुख्य बोर्ड के 12 आईपीओ अगले सप्ताह सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाले हैं. अमरीका में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक और साप्ताहिक बेरोजगारी दावों के आंकड़े समेत प्रमुख आर्थिक संकेतक निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे. इस बीच जापान, ब्रिटेन और यूरोजोन के जीडीपी के अनुमान भी जारी किए जाएंगे. चीन में पीपीआई और व्यापार से जुड़े आंकड़े प्रमुख आर्थिक संकेतकों में शामिल होंगे जिन पर निवेशकों की नजर होगी.
0: More than 500 institutional investors, finance ministers and business leaders will participate in the inaugural iBRICS summit on the sidelines of BRICS summit in New Delhi on the 12th and 13th of this month. The two-day summit is designed to connect sovereign capital with bankable infrastructure, energy and digital capacity projects across 21 BRICS member states and partner nations. Sovereign wealth funds, pension funds and family offices attending the iBRICS summit manage a total wealth of $1 trillion. They will discuss cross-border investments, non-dollar settlements and payment systems among BRICS economies. Discussions are also expected on linking national fast payment systems such as India's Unified Payments Interface or UPI and Brazil's PIX, along with interoperability between central bank digital currencies. The summit comes at a critical juncture as BRICS economies adapt to shifting trade dynamics, US tariff pressures and high dollar clearing costs.
3: आकार कार्यक्रम में आने के लिए मेरे और अनुभा के और हमारे तमाम श्रोताओं के और कॉलर्स के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
2: धन्यवाद.
0: And before we close, a look at the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls upon young Indians to build global consulting, accounting, financial and legal firms that can lead the world. Foreign portfolio investors were net sellers of Indian equities in the first week of September, and in bullion market, gold and silver prices declined last week. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: Namaskar. Namaskar.

0: ஒலித்தந்த பாடலோடு நிறைவு பெறுவது திரைகானம் நிகழ்ச்சி. சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत के ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल

0: का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की दो टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल दिल्ली में इमारत गिरने की दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगर से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ. सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स IRGC ने कहा कि उनकी एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक अमरीकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को कल दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। चीन के शेंझेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल्स में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टेंग और रेन जियांग यू को हराया। इस वर्ष यह उनका दूसरा 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Aditi Lumba. A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi yesterday. Three persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped.

0: சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
2: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था।

0: बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों को हर तरह संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की दो टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल दिल्ली में इमारत गिरने की दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइस कन्क्लेव के उद्घाटन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता पहचानने की जरूरत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया में चल रही उन खबरों और अटकलों पर स्पष्टीकरण दिया है जिसमें इसरो के निजीकरण या उनकी भूमिका कम किए जाने की बात की जा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने स्पष्ट किया कि ना तो उसका निजीकरण किया जाएगा और ना ही उसके महत्व को कम किया जाएगा। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का उद्देश्य संगठन की भूमिका को कमजोर करना नहीं बल्कि उसे भविष्य की अत्याधुनिक अंतरिक्ष तकनीकों पर ज्यादा ध्यान देने का मौका देना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों का उद्देश्य एक बड़ा, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष तंत्र तैयार करना है। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिला प्रशासन ने तीस्ता नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट सिक्किम के मंगन जिले के चियाकुंग के पास भूस्खलन के कारण तीस्ता नदी का मार्ग आंशिक रूप से अवरुद्ध होने के बाद जारी किया गया है। सिक्किम के मंगन, पूर्वी और पाक्योंग जिलों के प्रशासन ने भी तीस्ता नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हाई अलर्ट पर रहने की सलाह दी है। घटना के तुरंत बाद सिक्किम का जिला प्रशासन और आपातकालीन दल सक्रिय हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में 8 सितंबर तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satyanaketan area of Delhi yesterday. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Chief Minister Rekha Gupta has ordered a ministerial inquiry into the incident and directed registration of an FIR against the building owner. The Chief Minister's office said the decision was taken following an on-site review and a preliminary assessment of the incident. Earlier, the Chief Minister visited the mishap.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के संत निकेतन इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत के ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों को हर तरह संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं।

0: उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार यह निर्णय घटनास्थल का निरीक्षण करने और घटना के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के महानिदेशक से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। दिल्ली के सत्यनिकेतन में इमारत ढहने की दुखद घटना के मद्देनजर दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज बंद रहेगा। कॉलेज ने बताया है कि सत्यनिकेतन क्षेत्र में कई पेइंग गेस्ट आवास बंद होने और वहां रह रहे छात्रों में असुरक्षा की भावना को देखते हुए छात्रों को कॉलेज की कक्षाओं में ठहराया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन ने कहा है कि छात्रों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह अस्थायी व्यवस्था की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइस कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने दो यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और एक सोने का सिक्का जब्त किया है। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार दोनों यात्रियों को 2 सितंबर को दोहा से दिल्ली पहुंचने के बाद कस्टम्स अधिकारियों ने रोका। उनके सामान की जांच के दौरान कुल 20.883 किलोग्राम वजन के सोने और चांदी के सिक्के बरामद किए गए। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के तहत सिक्कों को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिला प्रशासन ने तीस्ता नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट सिक्किम के मंगन जिले के चियाकुंग के पास भूस्खलन के कारण तीस्ता नदी का मार्ग आंशिक रूप से अवरुद्ध होने के बाद जारी किया गया है। सिक्किम के मंगन, पूर्वी और पाक्योंग जिले के प्रशासन ने भी तीस्ता नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हाई अलर्ट पर रहने की सलाह दी है। घटना के तुरंत बाद सिक्किम का जिला प्रशासन और आपातकालीन दल सक्रिय हो गए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Akhila. A multi-story building housing a student-paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi yesterday. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Chief Minister Rekha Gupta has ordered a ministerial inquiry into the incident and directed registration of an FIR against the building owner. The Chief Minister's office said the decision was taken following an on-site review and a preliminary assessment of the incident. Earlier, the Chief Minister visited the mishap site and took stock of the situation. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu also reached the mishap site and oversaw the rescue operations. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the incident. Meanwhile, Sri Venkateshwara College of the University of Delhi will remain closed today, while Aryabhatta College has suspended teaching in view of the tragic incident. Delhi Mayor Pravesh Wahi has said that all illegal constructions having more than 4 floors will be sealed with immediate effect. He said strict action will also be taken against officials found responsible, including their immediate dismissal. In a social media post, the mayor said the orders will be implemented with immediate effect. Prime Minister

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत के ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों को हर तरह की संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन में इमारत ढहने की घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार यह निर्णय घटनास्थल का निरीक्षण करने और घटना के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने

की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के महानिदेशक से बात करके स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कई वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश विशेष वैश्विक रणनीति साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। श्री मोदी ने पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, अंतरिक्ष और जलवायु कार्यवाही सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत और फ्रांस नई ऊर्जा और गति के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस वर्ष 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में भी मना रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया में चल रही उन खबरों और अटकलों पर स्पष्टीकरण दिया है जिससे इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम किए जाने की बात कही जा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने स्पष्ट किया कि ना तो उसका निजीकरण किया जाएगा, ना ही इसके महत्व को कम किया जाएगा। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से संगठन की भूमिका को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे भविष्य की अत्याधुनिक अंतरिक्ष तकनीकों पर ज्यादा ध्यान देने का मौका देना है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने दो यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और एक सोने का सिक्का जब्त किया है। इसमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार दोनों यात्रियों को 2 सितंबर को दोहा से दिल्ली पहुंचने के बाद कस्टम्स अधिकारियों ने रोका। उनके सामान की जांच के दौरान कुल 20.883 किलोग्राम वजन के सोने और चांदी के सिक्के बरामद किए गए। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இதுவரை இனிய ராகத்தில் பண்டிட் ரவிசங்கர் அவர்களின் சித்தார் இசை கேட்டோம். அதனைத் தொடர்ந்து ஜுகல்பந்தி பண்டிட் ரவிசங்கர் அவர்களின் சித்தார், உஸ்தாத் அலி அக்பர் கான் அவர்களின் சரோடு இசை, உஸ்தாத் அலா ரகா அவர்களின் தபெலா இசை தொடர்ந்து ஒழிக்க வருகிறது. டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
2: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों को हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस पुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कई वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश विशेष वैश्विक रणनीति साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। श्री मोदी ने पेरिस में स्वामीनारायण मंदिर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा

0: प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, अंतरिक्ष और जलवायु कार्यवाही सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत और फ्रांस नई ऊर्जा और गति के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल दुबई पहुंचे। वह 3 दिवसीय संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए हैं। वे दुबई में आयोजित एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग AIM कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश को निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है, ताकि व्यापार को बढ़ावा मिले और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हों। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिला प्रशासन में तीस्ता नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट सिक्किम के मंगन जिले के चियांगकुंग के पास भूस्खलन के कारण तीस्ता नदी का मार्ग आंशिक रूप से अवरुद्ध होने के बाद जारी किया गया है। सिक्किम के मंगन, पूर्वी और पाक्योंग जिले के प्रशासनों ने भी तीस्ता नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हाई अलर्ट पर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। फुटबॉल में भारत ने AFC Under-20 एशियाई कप के मुख्य टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ताशकंद में कल अपने अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। इसके साथ ही भारत ने 20 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार इस टूर्नामेंट के मुख्य चरण में जगह बनाई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. A multi-story building housing a student-paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi yesterday. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Chief Minister Rekha Gupta has ordered a ministerial inquiry into the incident and directed registration of an FIR against the building owner. The Chief Minister's office said the decision was taken following an on-site review and a preliminary assessment of the incident. Earlier, the Chief Minister visited the mishap site and took stock of the situation. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu also reached the mishap site and oversaw the rescue operations. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the incident. Meanwhile, Delhi Mayor Pravesh Bahi has announced that all illegal constructions having more than 4 floors will be sealed with immediate effect. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. He said together with President Macron, both the countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of the Swami Narayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said from technology, AI and defense to space and climate action, both nations are moving forward together with new momentum and renewed energy. He said both the sides are also celebrating this year as the India-France Year of Innovation. The Prime Minister said the India-France strategic partnership is special because it rests upon the strong foundation of the long-standing cultural and political connections. Union Home Minister Amit Shah has said the government has prepared a 3-year roadmap to make country drug-free by 2029. He said the roadmap will be based on a 4-pillar approach aimed at dismantling narcotics networks. Mr. Shah was addressing a press conference at Panaji in Goa. He said a drug-free youth will play a crucial role in achieving the vision of a developed India by 2047. Mr. Shah stated that drugs worth around 1.89 lakh crore rupees were seized between 2014 and 2026. Indian Space Research Organization, ISRO, has issued a clarification and report circulating in the media regarding the speculations and misinformation that there is an attempt to privatize ISRO or reduce its role. In a social media post,

0: தொடர்வது செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
2: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिदेशक NS बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये निर्णय घटनास्थल का निरीक्षण करने और घटना के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कई वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। श्री मोदी ने पेरिस में स्वामीनारायण मंदिर के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, अंतरिक्ष और जलवायु कार्रवाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत और फ्रांस नई ऊर्जा और गति के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल दुबई पहुंचे। वो

0: संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। वो दुबई में आयोजित एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग AIM कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश को निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिले और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हों। पश्चिम बंगाल के कैलिम्पोंग जिला प्रशासन ने तीस्ता नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। ये चेतावनी सिक्किम के मंगन जिले में चियाकोंग के पास भूस्खलन के कारण तीस्ता नदी का मार्ग आंशिक रूप से अवरुद्ध होने के बाद जारी किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया में चल रही उन खबरों का और अटकलों का स्पष्टीकरण दिया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम किए जाने की बात कही जा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने स्पष्ट किया कि न तो उसका निजीकरण किया जाएगा और न ही इसके महत्व को कम किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। सात्विक साईराज रणकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने कल चीन के खिलाड़ियों को 11-21, 21-13 और 21-17 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi yesterday. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Chief Minister Rekha Gupta has ordered a magisterial inquiry into the incident and directed registration of an FIR against the building owner. The Chief Minister's office said the decision was taken following an on-site review and a preliminary assessment of the incident. Earlier, the Chief Minister visited the mishap site and took stock of the situation. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu also reached the mishap site and oversaw the rescue operations. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the incident. Meanwhile, Delhi Mayor Pravesh Bahi has announced that all illegal constructions having more than 4 floors will be sealed with immediate effect. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. He said, together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of Swaminarayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said, from technology, AI and defense to space and climate action, both nations are moving forward together with new momentum and renewed energy. He said both sides also celebrating this year as the India-France Year of Innovation. The Prime Minister said the India-France strategic partnership is special because it rests upon the strong foundation of the long-standing cultural and political connections. Union Home Minister Amit Shah has said the government has prepared a 3-year roadmap to make the country drug-free by 2029. He said the roadmap will be based on a 4-pillar approach aimed at dismantling narcotics networks. Mr. Shah was addressing a press conference at Panaji in Goa. He said a drug-free youth will play a crucial role in achieving the vision of a developed India by 2047. Floods have affected normal life in several parts of Bihar, with major rivers including the Ganga, Gandak and Kosi flowing above the danger mark. In view of the rising water level of the Ganga, authorities are maintaining heightened vigilance in downstream areas. The river has crossed the highest flood level at several ghats in Patna. In Uttar Pradesh, flood conditions remain critical, with 24 districts affected and several rivers still in spate. 5 people have died in the rain-related incidents. In Shahjahanpur district, the water levels of the Ganga and Ram Ganga rivers are near the danger mark. Administration has advised residents living along the banks of the Garda and Khakra rivers and in low-lying areas to remain vigilant. Meanwhile, the India Meteorological Department, IMD, has forecast

அமரர்